मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने खेती की बातें कार्यक्रम। आज का विषय है करेला की खेती। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: आज हम करेला की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सफल खेती के लिए ज़रूरी है सही भूमि का चुनाव। आमतौर पर इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करते समय यह देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर नमी की कमी है तो पलेवा दे करके यह कार्य करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर बाद की तीन चार जुताइयाँ देसी हल से करनी चाहिए। तत्पश्चात पिछली फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकालकर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। खेत की तैयारी के समय लगभग 250 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति बीघा की दर से आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया की एक तिहाई मात्रा तथा डाई अमोनियम फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। बची हुई यूरिया की मात्रा को दो बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसे दो बार में, पहली मात्रा जब करेला में तीन चार पत्तियाँ आ जाएँ तब तथा दूसरी मात्रा जब उसमें फूल निकल रहे हों तो देना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए तीन बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्नतशील किस्म, दूसरा बीज की सही मात्रा और तीसरा बुआई का सही तरीका। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर बारहमासी, अर्का हरित और फैजाबादी करेला इसकी उन्नतशील किस्में हैं। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके आप अच्छी प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बीघा खेत में करेला की बुआई कर रहे हैं तो 1 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तैयार खेत में 2 मीटर की दूरी पर 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। अब नाली के दोनों तरफ जो मेड़ बनती है उस मेड़ की ढाल पर बीज बोते हैं। लाइनों में बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक स्थान पर 2-3 बीज डाले जाएँ। अब बात आती है इस फसल की देखभाल की, और देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सिंचाई का। क्योंकि यह गर्मी की फसल है अतः खेत में नमी जल्दी उड़ जाती है। इसके लिए प्रत्येक 6-7 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निकाई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार निकाल देते हैं। इससे खेत में नमी संरक्षित रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। करेला की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है, इसको समय रहते नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि करेला की खेती करते हैं तो प्रति बीघा लगभग 40 कुंटल, कहने का मतलब ये कि लगभग 150 से 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे मिल जाती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेला की खेती करनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था करेला की खेती। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी।

भगवान विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, कमल और गदा है। वे संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। आइए करें भगवान हरि का स्मरण।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर, मनहर उदास, मंजू सुंदरम और जयश्री गुप्ता। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने विचार बिंदु। आज का विषय है चारित्रिक मूल्य।

मनुष्य रूपे न मृगाक्षरं थी। जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप, न दान है, न ज्ञान है, न शील अर्थात सच्चरित, न गुण और न धर्म, वे इस मृत्युलोक में भूमंडल के भार के समान मनुष्य के रूप में पशु की तरह ही भ्रमण करते हैं। विद्यादि गुणों से रहित वे मानव पशु तुल्य हैं और भूधरा पर उन लोगों का जीवन भार स्वरूप ही है। श्री भर्तृहरि ने नीति शतकम में शील वृत्त अथवा चरित्र की मुक्त कंठ से चर्चा की है। चारित्रिक मूल्य का स्वाभाविक वास्तविक विवेचन चरित्र संबंधी कीमत क्या है, क्यों है, इसकी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति से विश्व का कल्याण निहित है। हितोपदेश में पंडित विष्णु शर्मा जी ने व्यक्त किया है, अयम निजह परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। लघुचित्ती जन हमारा यह है वह दूसरे का है, ऐसी भेद विचारणा करते हैं, परंतु उदार चित्ती समस्त वसुधा को अपना परिवार समझकर व्यवहार करता है। चारित्रिक मूल्य अतुल है। वित्त एवं वृत्त दो होते हैं। वित्त एवं वृत्त अर्थात चरित्र को यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। दोनों में वृत्त की रक्षा पूर्ण रूप से करना चाहिए, क्योंकि वृत्त अर्थात चरित्र समाप्त होने पर वह अप्राप्त हो जाता है, परंतु वित्त या धन जाने पर पुनश्च प्राप्त हो भी सकता है। आचारोपदेष्टा ने इस प्रकार कहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वृत्त तक्षीणो वृत्त तत्तु हतो हतः। चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करे, धन तो आता है और जाता है, धन की क्षीणता क्षीणता नहीं मानी जाती, चरित्र की क्षीणता से अवसान हो जाता है। चरित्रवान व्यक्ति समाज को प्रकाशित करता है, समाज राष्ट्र को एवं राष्ट्र विश्व को सतत प्रकाशित करता रहता है। चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आदर्श चरित्र से परम पूज्य हुए। श्री राम में तीन विशेषताएं पाई गईं, रामो जीर्ण भाषते, राम एक तीर, राम एक नारी। भगवान राम के पावन चरित्र से भुक्ति एवं मुक्ति मिलती है। तुलसी के शब्दों से अवगत हों, प्रातः

0: महिमा था। सती अनसुया के चरित्र से नारी जगत का कल्याण गोपनीय नहीं है, चरित्र आदर्श से समस्त प्राणी का कल्याण संभव है। श्री लक्ष्मण का चरित्र आदर्श है और ग्राह्य भी है, शूर्पणखा से विवाह नहीं किया, लक्ष्मण चरित्र के प्रबल पोषक थे। श्री भरत जी का चरित्र आदर्श है, वे राज्य के लोलुप नहीं हुए, श्री राम के महत्व की स्थापना ही उनके जीवन का आदर्श था। भगवान राम तो अवधराज छोड़ विपिन चले गए। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेश सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयिते सितमन्वधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सुदुस्तज राज लक्ष्मी का परित्याग पूज्य पिता राजा दशरथ हेतु किया। महारानी सीता जी का चरित्र वाल्मीकि द्वारा वर्णित है, दुष्ट रावण के प्रलोभन में नहीं आई, माता ने किसी अपमार्ग को नहीं स्वीकारा, यह नारी जगत हेत एक आदर्श शिक्षा है। नारी के आदर्श चरित्र में सोने में सुगंध जैसी झलक है। चरित्रवान ध्रुव प्रहलाद को देखें, भगवान वासुदेव ने तो द्रौपदी की लज्जा बचाई। आदर्श चरित्र का आकलन राम श्याम के चरित्र से ग्रहण करें, प्राकथा ही चारित्रिक मूल्य को दिशा देती है। वेदोपनिषद में चरित्र पर विशेष बल दिया गया है, वह सार्वभौम शिक्षा सागर है। पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् सुनियाम शरदः शत मदीनाः श्याम शरदः शतम् भूयश शरदः शतात् सौ वर्ष हेतु आयु श्रवण धनवान चरित्रवान होने हेतु भूमा से प्रार्थना की गई है। जीवन पर ही चरित्र आधारित है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृगया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते बिना वृत्तम कथम राष्ट्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। आज का विषय था चारित्रिक मूल्य। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। साथियों, स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य मिलाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है इस मौसम के आहार विहार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडेय।
2: मैं चंद्रशेखर पांडे, मैं आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूं और आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार। ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार उस काल उस देश में उत्पन्न हुए फल अन्य पदार्थों का सेवन करना है। दूसरी चीज है कि जो जिसके लिए साथ में है, सुटेबल है, कंपेटेबल है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे कभी मौसम बदल गया, जैसे आजकल चल रहा है ऋतु विपर्य, गर्मी के दिन में ठंड लग रही है, लोग पंखा बंद कर दिए हैं, एसी से ज्यादा ठंड बाहर है, बरसात हो रही है, तो उस समय का नियम है कि जिस ऋतु का उस समय प्रयोग हो चुका है, प्रकृति ने जैसा परिवर्तन कर दिया है, उस ऋतु के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। जैसे इस समय गर्मी के दिन में भी ठंड लग रही है, जल की वृष्टि हो रही है, तो हम लोगों को वर्षा ऋतु के शीत ऋतु के अनुसार भी आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से गर्मी के समय में प्रयोग होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको अगर बांटा जाए तो अन्न वर्ग, जो हम अन्न खाते हैं, चावल है, दाल है, इनमें हमको कोशिश करना चाहिए पुराना चावल का सेवन करें, पुराने गेहूं का सेवन करें, नवान्न सेवन कम करें। विशेष रूप से जो लोग किडनी के बीमार हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, जिनमें मेटाबॉलिक इस तरह के सिंड्रोम्स हैं, उनको पुराना चावल पुराने अन्न का सेवन करें, मूंग की दाल का सेवन करें, लौकी नेनुआ इस तरह की सब्जियों का प्रयोग करें, जो अधिक जिनमें मसाले पड़ते हैं ऐसी सब्जियों का कम प्रयोग करें। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां अन्य क्षेत्रों की तरह से भोजन बनाने की विधियों पर भी एक लंबा रिसर्च हुआ है और ये चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ती, वो है यहाँ के मसालों का प्रयोग। इतना समुचित प्रयोग है कि लौकी जीरे से छौंकी जाएगी, कद्दू है तो मेथी डाला जाएगा, अरवी है तो अजवाइन डाली जाएगी, यानी ऐसे कंटेंट्स के साथ उसका संयोग करना जिससे उसके बुरे प्रभाव समाप्त हो जाए, अच्छे प्रभाव बने रहें। इसी तरह से दुग्ध वर्ग है, अधिक दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए छाछ बना के लें, दूध केवल शाम को लें, घी का प्रयोग करें लेकिन अधिक घी का प्रयोग न करें। जल वर्ग में शुद्ध साफ जल लें, आरओ के पानी को मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत अच्छा

0: नहीं समझता, लेकिन अगर गंदा पानी है तो उसको उबाल के छान के या फिल्टर करके ही पीना उचित है। इसी तरह से फल वर्ग है, फल वर्ग में जो भी फल इस ऋतु में उत्पन्न हो रहे हैं, जो कोल्ड स्टोर से न्याय आसानी से प्राप्त हो, उस फल का और प्राकृतिक अवस्था में और स्वस्थ हो, दो चीजों का ध्यान रखना है। प्राकृतिक अवस्था के हों, जबरदस्ती पकाए न गए हों, जबरदस्ती बढ़ाए न गए हों, और स्वस्थ हों, स्वयं में धूप से हवा से प्रीणित हों। इसी तरह से आमिष वर्ग, इस समय जितने आमिष यानी मछली मांस इत्यादि का कम से कम प्रयोग करें, अगर करना है तो बहुत पतला सूप बना करके बहुत अच्छे तरह से करके प्रयोग करें। इसी तरह से कृतान्न वर्ग में, जो हम फूड को प्रोसेस करते हैं, जो उनको संस्कारित करते हैं, उनमें ऐसी प्रोसेसिंग कम करें जो अधिक गरिष्ठ हो जाए। भोजन को इस तरह से प्रोसेस करें कि उसके पचने की क्षमता अच्छी हो, लघु बने और न्यूट्रिशन दे। गर्मी की ऋतु में अगर एक सूत्र में हमको कहा जाए किस प्रकार के आहार का सेवन करना है, तो शब्द है लघु संतर्पण आहार। लघु माने जो पचने में आसान हो, संतर माने जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी जिसकी बहुत अच्छी हो। तो इस तरह से ऐसे आहार विहार का हमको सेवन करना है, और एक चीज का सेवन नहीं करना है, जो शब्द हम लोगों के यहाँ कोई चीज अच्छी है अपने लिए सुटेबल है तो एक शब्द लोग कहते हैं इसका खूब सेवन करें। ये एक बड़ा गलत कंटेंट लोगों के बीच में जाता है कि खूब सेवन का तात्पर्य नहीं है, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हमारे लिए साथ में है, जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं, वही मात्रा आहार की, वही आहार, वही मात्रा और वही प्रयोग विधि हमारे लिए सुटेबल है, जो हमारी धातुओं को कोई विषमता उत्पन्न किए बिना ही हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण रखे और धातुओं का पोषण करे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय था इस मौसम में आहार विहार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के कलाकार थीं रंजना जोगलेकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, जो रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, ये प्रसारित होगा हमारे दिल्ली केंद्र से ही। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से शाम 4 बजे। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जो हम रिले करेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे वीणा वादन, कलाकार होंगे डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा, और दिन में 12:45 और सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार होंगे डॉक्टर आरपी शास्त्री। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे चंदन दास, और दिन में 12:30 पर सुनिए भजन, कलाकार होंगे लोकेश शुक्ला। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारियों और इसका इलाज विषय पर डॉक्टर ए के प्रसाद की बातचीत। साथ ही सुनेंगे डॉक्टर संध्या गुप्ता और साथी के गाय लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीत आप सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। शाम 5 बजे धरती के गीत

कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमला केशवानी के गाए सिंधी गीत। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया। कहकशा कार्यक्रम का समय होगा दिन में 2:30 और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:00। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन में 11:00 और फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार दिन में 10:00। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:00। इसके अलावा फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकेंगे रसमाधुरी में रात्रि 8:15 पर, रसरंग में रात्रि 7:31 पर और शाम 6:10 पर भी। और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी 7:00। श्रोताओं आपको याद दिला दें रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण जो रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गंभीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्डाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अन्तर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य अष्टमे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बढ़िया, जबरदस्त और चकाचकना। हाँ जी दोस्तों, मैं भी आपकी होस्ट और दोस्त शुचि बिल्कुल मस्त और चकाचक है। तो चकाचक बनारसियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहाँ से भी यानी जिस शहर या जिस क्षेत्र से हमें सुन रहे हैं, अपने रेडियो और मोबाइल सेट का कर लीजिए वॉल्यूम एकदम फुल, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट और नंबर 1 मॉर्निंग शो, द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। और साथ ही कीजिए आज के अपने मॉर्निंग साथी शुचि का स्वीकार, प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: पकौड़ी। जागो जागो जागो सुबह आ गई, जल्दी से लो चाय ठंडी हो गई।
1: हाँ जी, जाग जाइए बनारस, क्योंकि सुबह हो चुकी है। जिंदगी ने फिर से एक नई रफ्तार पकड़ ली है, उम्मीदों ने आंख खोल दी है, सपनों ने नई उड़ान भरनी शुरू कर दी है। और काशी की गलियों से लेकर गंगा के घाटों तक हर भोर एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो दूरियां मिटा सकती है, उम्मीद जगा सकती है और दिलों को जोड़ सकती है। और जब इन्हीं शब्दों को एक सच्ची आत्मीय आवाज मिल जाए तो वो केवल एक आवाज नहीं रहती, बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे, अपनत्व और भावनाओं का माध्यम बन जाता है।

जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं आवाज की बात क्यों कर रही हूँ, तो वजह भी बेहद खास है। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि एक सच्ची आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचती है। कभी जानकारी बनकर, कभी संगीत बनकर, कभी प्रेरणा बनकर और कभी मुश्किल समय में एक भरोसेमंद साथी बनकर। दोस्तों, भारत में प्रसारण का सफर जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण के साथ शुरू हुआ। भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना 23 जुलाई सन 1927 को हुई, जो देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म का प्रतीक है। इस स्थिति को अब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सन 1920 में हुई थी। पहला कार्यक्रम सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद सन 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरुआत हुई। इसके बाद सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इन्हें परिचालित करना शुरू कर दिया। सन 1936 में इसका नाम फिर से बदला गया और ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और अंत में सन 1957 में एक बार फिर इसका नाम बदला गया और आकाशवाणी नाम रखा गया। आकाशवाणी भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन के लिए सेवा कर रहा है, जिसका उद्देश्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इसका अनुसरण आज भी हो रहा है। यह आकाशवाणी भाषाओं की संख्या में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। आज ऑल इंडिया रेडियो 591 स्टेशनों का संचालन करता है, जो भारत के 98% आबादी तक पहुंचता है। और इतना ही नहीं, ये 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। दोस्तों, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी बल्कि भारत में आधुनिक संचार क्रांति की ऐतिहासिक शुरुआत थी। उस समय रेडियो ऐसा माध्यम बनकर उभरा जिसने भाषा, क्षेत्र, जाति और सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर करोड़ों लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में समाचारों के प्रसार, राष्ट्रीय चेतना जगाने और लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने में रेडियो की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। आज भी रेडियो अपनी सरलता, विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच के कारण सबसे भरोसेमंद जनसंचार माध्यमों में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, साहित्य, कविता, वार्ता, समाचार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और जन जागरूकता से जुड़े हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। देश के अनेक महान गायक, वादक, साहित्यकार, कवि, नाटककार, उद्घोषक और समाचार वाचक आकाशवाणी के मंच से ही राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए। अनेक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकाशवाणी के ही माध्यम से घर घर तक पहुंची है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रसारण, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा आपदा एवं युद्ध जैसी परिस्थितियों में त्वरित और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने में भी रेडियो की भूमिका सदैव उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस केवल रेडियो के इतिहास का उत्सव नहीं है बल्कि ये उन लाखों प्रसारण कर्मियों, उद्घोषकों, समाचार वाचकों, रेडियो जॉकी, एंकरों, तकनीकी विशेषज्ञों, ध्वनि अभियंताओं, निर्माताओं, पटकथा लेखकों और मीडिया पेशेवरों के समर्पण को भी सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने अपनी आवाज, प्रतिभा और अथक परिश्रम से देश की सूचना व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाया है। ये दिवस हमें सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहितकारी सूचना के महत्व का भी संदेश देता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें ये याद दिलाता है कि प्रसारण केवल आवाज

जू का सफर नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और जनसेवा की एक सतत परंपरा है। समय बदला, तकनीक बदली, माध्यम बदले, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने की रेडियो की आत्मीयता आज भी वैसी ही है। यही वो शक्ति है जो देश को जोड़ती है, समाज को जागरूक बनाती है और हर नई सुबह के साथ उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आती है। आइए इस अमूल्य विरासत को संजोए रखे और जन जन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के इस सफर का हिस्सा बने। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, अपनी होस्ट और दोस्त शुचि के साथ। दोस्तों, बातें तो हमारी और भी होती रहेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और बने रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग बनारस में।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के दिन अपने देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। रेलवे कॉलोनियों में पीएनजी आपूर्ति हेतु पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार वाराणसी मंडल एवं गेल इंडिया के मध्य एमओयू किया गया। जी हां दोस्तों, वाराणसी स्थित रेलवे कॉलोनियों में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल एवं गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार वाराणसी मंडल द्वारा इस प्रकार का समझौता किया गया है, जो कर्मचारियों के कल्याण एवं आधुनिक आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। वाराणसी मंडल के भारतेंदु सभागार कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन की गरिमामयी उपस्थिति में वरिष्ठ मंडल इंजीनियर विकास कुमार सिंह तथा गेल इंडिया लिमिटेड वाराणसी के महाप्रबंधक सुशील कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर विकास कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर 2 विनीत कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक नितेश अग्रवाल सहित मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने पीएनजी के उपयोग के अपने सकारात्मक अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये एक सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन

है। रेलवे कॉलोनियों में पीएनजी आपूर्ति प्रारंभ होने से कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सुरक्षित, निर्बाध, पर्यावरण अनुकूल एवं सुविधाजनक गैस उपलब्ध होगी। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी, पारदर्शी मीटर आधारित बिलिंग सुनिश्चित होगी तथा कर्मचारियों के जीवन स्तर एवं आवासीय सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। मंडल रेल प्रबंधक ने औड़िहार गाजीपुर सिटी रेलखंड का निरीक्षण कर सिटी स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना की प्रगति देखी एवं ZRTI गाजीपुर की 8वें वर्षगांठ पर नई सुविधाओं का किया शुभारंभ। जी हां दोस्तों, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी आशीष जैन ने मंडलीय अधिकारियों के साथ औड़िहार गाजीपुर सिटी रेल खंड का विंडो निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गाजीपुर सिटी स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान पूर्वोत्तर रेलवे गाजीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से संवाद किया तथा उनकी सुविधाओं में और अधिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए

के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान पूर्वोत्तर रेलवे गाजीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से संवाद किया तथा उनकी सुविधाओं में और अधिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आशीष जैन ने महिला प्रशिक्षु कर्मचारियों के लिए नव विकसित मनोरंजन कक्ष का उद्घाटन फलक का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल डिस्प्ले सूचना बोर्ड गाड़ी प्रबंधन के उपकरण कक्ष स्टेशन मास्टर मॉडल कक्ष के उपकरण तथा प्रशिक्षुओं के लिए शुद्ध पीने के पानी की सुविधा हेतु आरओ प्लांट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आगामी 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने ऐतिहासिक मुख्य भवन और शताब्दी भवन अतिथि गृह का व्यापक निरीक्षण कर समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध ढंग से उच्च गुणवत्ता के साथ सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह 29 जुलाई को प्रातः 9 बजे ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने पंडाल निर्माण, मुख्य मंच, बैठक व्यवस्था, विद्युत एवं ध्वनि प्रणाली, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग, अतिथि सत्कार और मीडिया प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समारोह विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप भव्य, सुव्यवस्थित और गरिमामय होना चाहिए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन समारोह की प्रत्येक तैयारी पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यदायी संस्थाओं के समन्वित प्रयास से ये दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के इतिहास में एक यादगार आयोजन साबित होगा। उन्होंने बताया कि समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जबकि विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र छात्राओं को कुलाधिपति के कर कमलों से स्वर्ण पदक एवं अन्य सम्मान प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अवसर विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। कुलपति ने ये भी बताया कि दीक्षांत समारोह से पूर्व विश्वविद्यालय में दीक्षोत्सव के अंतर्गत शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान कुलानुशासक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा, अभियंता राम विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें उपस्थित रहे। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 23 जुलाई में क्या है खास। सन 2000 में व्यापक घोषणाओं के साथ नागो में हुए समूह 8 का 26वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था आज ही के दिन। सन 2001 में मेघावती सुकोर्णपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी थी। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और अब दोस्तों समय हो गया है आप सभी से टाटा बाय बाय करने का। हम फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की, कहा देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
4: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
2: वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कल पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मंगलवार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। अयोध्या के श्री मणिराम दास

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो रहे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे

0: छावनी में कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
3: मुख्यमंत्री 6-लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने 6-लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुसुमनगर, देवरिया, बिहार, महाराजगंज और नेपाल तक आने जाने वाले लोगों की यात्रा में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के 10 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे।
4: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत कल प्रदेश के बिजनौर जिले में 157 तालाबों की खुदाई का काम शुरू किया गया। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां 409 अमृत सरोवरों के बाद अब 562 चिन्हित स्थानों पर जल संचयन के लिए ढांचा

0: मजबूत किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्रिटिकल जोन में भूजल स्तर में सुधार करना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 25 जुलाई तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी में खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की। कहा, देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता। कहा, युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाए, प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:31 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वायलिन वादन। आज के कलाकार हैं डॉक्टर RP शास्त्री। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं राग विलास खानी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर पी शास्त्री का वायलिन वादन। राग था विलास खानी तोड़ी। आइए अब सुनते हैं इसी के अंतर्गत राग भैरवी में धुन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वायलिन वादन। आज के कलाकार थे डॉक्टर आरपी शास्त्री। राग था भैरवी में धुन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिससे किसानों ने बड़े

0: पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से

0: मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: Deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
3: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
4: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा

संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50%

0: Right. Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदामात तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदामात अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही जिसमें देही तरक्की ज़राअत समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहायशगाह पर मुनक़िद हुई जिसमें हुक्मरानी को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निज़ाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की जरूरत है ताकि इस चैलेंज से ज्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने पीएम कुसुम स्कीम की ज़रई शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फायदा पहुँच सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायजा लिया जाए ताकि भारत की अफराजी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोजगार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की जरूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर व खौज जरूर

0: भी है।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरान ही का फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जामे बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्जाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
1: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
0: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहिरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखनांदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम अज कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 200

0: 120 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजा किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड ईएमसी को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालुर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निकोसर दान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुलरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और खासतौर पर देही इलाकों में जरिए मालूमात पहुंचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्लोलैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करता रहा है। नई दिल्ली से दिन नशे आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है, अपोजिशन की हंगामा राई की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्त पर सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا

0: हमला।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदामात तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अल-अक़वामी टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

0: మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా
1: सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में आप सभी का स्वागत है। सुनवाते हैं कार्यक्रम में आज का पहला गाना, फिल्म बचना ए हसीनों से। गीत के बोल हैं अन्विता दत्त गुप्तन के, संगीत है विशाल शेखर का और आवाजें हैं के और शिल्पा राव की।

फिल्म बचना है हसीनों से आप सुन रहे थे ये गाना। अगला गाना सुनिए फिल्म ब्रह्मास्त्र से। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत दिया है प्रीतम ने और आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

अभी आपने सुना फिल्म ब्रह्मास्त्र से ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है विशाल शेखर का और आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मणि की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत। मधुरमा में एक फिल्म संगीत का सफर जारी है, लौटेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लेकिन दुनिया जैसे घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगला गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक विलन से। बोल और संगीत हैं मिथुन के और आवाज है अरिजीत सिंह की।

फिल्म एक विलन से सुन रहे थे आप ये गीत। अगला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की।

फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से सुन रहे थे आप ये गीत। अगला गाना सुनिए फिल्म एनिमल से। बोल हैं राजशेखर के, संगीत और आवाज़ है विशाल मिश्रा के।

0: ഡി മധുരിമ.
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. सुबह के 9:15 होने वाले हैं. अब आप सुनेंगे जिले की हलचल, जो रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से.

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
1: शामली जिले की धरती को कीटनाशकों के जहर से बचाने के लिए कृषि विभाग ने समेकित कीट प्रबंधन IPM के तहत सोलर लाइट ट्रैप तकनीक की पहल की है। यूरिया और DAP की बढ़ती खपत के बीच यह आधुनिक तकनीक पर्यावरण की रक्षा करेगी और किसानों को फसल के होने वाले 20-40% आर्थिक नुकसान से बचाएगी। पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार फसल से 3-4 फीट ऊपर लगने वाला यह लाइट ट्रैप सूर्यास्त के बाद प्रकाशों से कीटों को आकर्षित कर नष्ट कर देगा। इससे अंडों की श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे गन्ना टाप बोरर सफेद गिडार और धान का तना छेदक जैसे कीट पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पहले चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी ब्लॉकों के लिए 250 सोलर लाइट ट्रैप आवंटित किए गए हैं। 635 की कीमत वाले इस उपकरण पर 431 का DBT अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को यह मात्र 204 में उपलब्ध होगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। शामली जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सहकारिता गन्ना और इफको की सभी संस्थाओं पर CCTV कैमरे लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। किसानों को जोत के अनुसार संतुलित खाद की पर्याप्त उपलब्धता, उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, अभद्रता और बेवजह हंगामे पर अंकुश को यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख उर्वरक वितरण केंद्रों को सर्विलांस के दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता विभाग की 43 संस्थाओं, 36 सहकारी समितियों व उनके 7 उपकेंद्रों, गन्ना विभाग के 18 केंद्रों और इफको के 4 केंद्रों पर CCTV स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए खाद के स्टॉक लोडिंग और वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ ही AR कोऑपरेटिव और गन्ना अधिकारियों को तहसीलों क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है। सभी संबंधित विभाग इन कैमरों को अपने कार्यालयों से लिंक कर सीधे कमांड और मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को जोत के आधार पर पर्याप्त व संतुलित खाद मिलेगी। कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए समितियों और बिक्री केंद्रों को CCTV से जोड़ा जा रहा है। स्टॉक की जानकारी भी SMS से मिलेगी। लापरवाही मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शामली में जिला अस्पताल में जल्द ही थायराइड, विटामिन डी और अन्य जरूरी हार्मोन्स की जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक इम्यूनोइस एनालाइजर, हार्मोन्स एनालाइजर मशीन के संचालन का बजट जारी हो चुका है। CMS डॉक्टर मनोज कुमार अखोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रत्येक CHC पर यह सुविधा उपलब्ध करानी है। योजना के तहत POCT के कर्मचारी सभी CHC से मरीजों के सैंपल एकत्र कर जिला अस्पताल पहुंचाएंगे, जहां जांच के बाद रिपोर्ट सीधे मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। एंड्रॉइड फोन न होने पर मरीजों को संबंधित CHC से ही हार्ड कॉपी मिलेगी। इस आधुनिक मशीन से थायराइड प्रोफाइल, इंसुलिन, विटामिन B12, प्रजनन व गर्भावस्था संबंधी हार्मोन्स और कई संक्रामक रोगों की सटीक व तेज जांच संभव होगी। रिजेंट किट और स्टाफ की उपलब्धता के साथ 30 जुलाई तक मशीन के सुचारू संचालन की पूरी संभावना है। शामली जिले ने गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पेराई सत्र 2025-26 के क्रॉप कटिंग परिणामों के आधार पर शामली 969.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर के रिकॉर्ड औसत उपज के साथ लगातार 8वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिला गन्ना अधिकारी रणजीत कुशवाहा ने बताया कि यह जिला वर्ष 2018-19 से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जहां पिछले 8 सत्रों में उत्पादकता ग्राफ बेहतरीन रहा है। इस बार प्रदेशीय रैंकिंग में मुजफ्फरनगर 900.96 प्रति हेक्टेयर के साथ दूसरे और मेरठ 825.64 कुंतल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गन्ना विभाग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय शामली के किसानों की कड़ी मेहनत, लगन और आधुनिक वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाने को दिया है। इससे जिले ने गौरव बढ़ाया है। शामली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में TB मरीजों की खोज में बड़ी सफलता मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी से 30 जून तक लक्ष्य से अधिक 1996 मरीजों की पहचान कर 101% की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

0: लक्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अथर जमील ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पोषण योजना के तहत मरीजों को 4 अवधि तक प्रतिमाह 1,000 की आर्थिक सहायता सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके तहत 100 मरीजों की सूची तैयार कर निक्षय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिन्हें पहली किस्त के रूप में 3,000 दिए जाएंगे। शेष 6 माह का उपचार पूरा होने पर दूसरी किस्त मिलेगी। विभाग ने जिन मरीजों की बैंक KYC अधूरी है, उन्हें इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत मुफ्त जांच कराने की अपील की है। शामली जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की अनूठी शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम चरण में विभिन्न समूह की 25 महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें ई रिक्शा चलाने के लिए 20 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 1.5 लाख रुपए की लागत वाले इन गुलाबी रंग के ई रिक्शा पर समूह की पूरी जानकारी अंकित होगी। प्रशासन ने 25 ई रिक्शा का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही ये सड़कों पर दिखाई देंगे। हाल ही में कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, CMO कार्यालय, विकास भवन और पुलिस ऑफिस जैसे प्रमुख सरकारी दफ्तर पूर्वी यमुना नहर पर स्थानांतरित हुए हैं, जिससे वहां लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। यात्रियों की सहूलियत और महिलाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में इन्हें इसी रूट पर चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी चरणों में पिंक ई रिक्शा को पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।
1: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपराड़ा यादव ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपराड़ा यादव ने मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। उपाध्यक्ष अपराड़ा यादव ने स्कूल चलो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपाध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर एवं पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में 10 बच्चे भर्ती पाए गए। उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उपाध्यक्ष ने कहा कि NRC से वापस लौटने के बाद भी बच्चों की नियमित देखभाल की जाए, ताकि कुपोषण की पुनरावृत्ति न हो। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने से शिक्षकों में काफी खुशी है। गंभीर बीमारियों का इलाज कराना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे आसान कर दिया है। इस योजना से शिक्षकों को बहुत फायदा होगा, शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। अंबेडकर नगर में विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग एवं स्टेशनरी के लिए धनराशि भेज दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए भेजा गया है। अंबेडकर नगर के प्रभारी और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित जन चौपालों में शामिल हो रहे हैं। श्री राजभर ने कहा कि सरकार प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में राहत चौपाल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसील टांडा के बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई से राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में आपदा से बचाव एवं राहत उपाय की जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर फलदार पौधों का भंडारा आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस भंडारे में फरियादियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को फलदार पौधे वितरित किए गए। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता, जन जागरूकता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में समरस वन स्थापना के तहत लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया गया। कटेहरी विकासखंड के ग्राम पतौना में स्थित अंबेडकर पार्क में समरस वन की स्थापना का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोहिया भवन सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 184 सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक अंबेडकर नगर में संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को आयोग के गठन के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछड़ेपन प्रकृति कारण आदि की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की समस्या के निदान के संबंध में भारत सरकार के टेक्सटाइल निदेशक अश्विनी पांडे और DM ईसा प्रिया ने बुनकरों और उद्यमियों के साथ बैठक की। टेक्सटाइल निदेशक ने इकाइयों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बुनकरों की समस्याओं से टेक्सटाइल निदेशक को अवगत कराया। अंबेडकर नगर में इस समय खेती किसानी का काम तेजी से चल रहा है। धान की रोपाई का काम अपने आखिरी चरण में है। मानसून के आने और बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। ज्यादातर किसान इस समय खेतों में खाद की बुआई कर रहे हैं। जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए लोक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टांडा तहसील क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और एसडीएम पुष्पेंद्र

0: पटेल की मौजूदगी में लोक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 3 विवादों का निपटारा किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। जनपद मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात से प्राप्त एक सूचना के अनुसार शिवा, पिता का नाम रामेश्वरी मांझी, दिनांक 17 मई 2026 से ये लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 10 वर्ष है, कद 3.5 फीट, चेहरा गोल और रंग सांवला है। लापता होने के समय इन्होंने जीन्स, फुल पैंट, फुल बाजू की लाल शर्ट पहनी थी। इनके संबंध में यदि कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो तो आप अपने निकटतम थाना या थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज से है। सेजल यादव, पुत्री कल्लू यादव, 7 जून 2026 से दिलदार नगर पर खड़ी विभूति एक्सप्रेस से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 15 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद कुर्ती पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने निकटतम थाना या कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को सूचित कर सकते हैं। जनपद मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार आस्था यादव, पिता का नाम नरेश यादव, अपने पते ग्राम अधौली से 21 मई 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में सूचना कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 14 वर्ष है, कद 5 फीट, चेहरा गोल और रंग गेहुआ है। यदि इनके संबंध में कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो तो आप अपने निकटतम थाना या जनपद मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात को सूचित कर सकते हैं। थाना चुनार जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार रिंकी प्रजापति, पिता का नाम होरीलाल प्रजापति, अपने पते ग्राम रुदौली थाना चुनार जनपद मिर्जापुर से दिनांक 21 मई 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, चेहरा गोल और लापता होने के समय इन्होंने काला सूट, काली छीटदार प्लाजो, गुलाबी स्टॉल और पैरों में चप्पलें पहनी थीं। इनके संबंध में यदि कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो तो आप थाना जनपद मिर्जापुर या अपने नज़दीकी थाना को सूचित कर सकते हैं। थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना के अनुसार विशाल, पिता का नाम विनोद, अपने निवास के पते सोनगढ़ा थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से दिनांक 20 मई 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है।

इनका रंग सांवला, चेहरा लंबा है। यदि इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाना या थाना हलिया जनपद मिर्ज़ापुर को सूचित कर सकते हैं। सूचना एक बार फिर से। जनपद मिर्ज़ापुर थाना कोतवाली देहात से प्राप्त एक सूचना के अनुसार शिवा, पिता का नाम रामेश्वरी मांझी, दिनांक 17 मई 2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 10 वर्ष, कद 3.5 फीट, चेहरा गोल और रंग सांवला है। लापता होने के समय इन्होंने जीन्स, फुल पैंट, फुल बाजू की लाल शर्ट पहनी थी। इनके संबंध में यदि कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो तो आप अपने निकटतम थाना या थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना यहीं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू का

0: काकोरी कबाब, काकोरी कबाब शिद्दत से बनाई जाती है, चिगरी पे बनाई जाती है, रोस्ट होता है, बट वो आप दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर वो सॉफ्ट नहीं हो
1: तो मजा नहीं आएगा खाने में।
0: अगर मुंह में जाने के बाद वो घुले ना
1: बिल्कुल,
0: तो पता ही नहीं चल गया कि काकोरी है या सीख कबाब है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो वो चीजें
1: काकोरी और सीख कबाब में क्या फर्क होता है
0: सर? काकोरी जो है बहुत टाइम एंड बहुत दिक्कत वाला प्रिपरेशन है, क्योंकि इसमें इतना मिंस किया जाता है मटन को, इतनी सारी गरम मसाला का यूज होता है, फ्लेवरफुल होता है। एंड ये काकोरी कबाब का इन्वेंशन इसलिए किया गया था कि नवाब साहब थे हमारे जो जिनके दांत टूट गए थे, उनको कबाब खाना था, तो इसलिए उन्होंने खान सामा को बोला कि ऐसा कबाब बनाओ जो हम खा सके। तो खान सामा ने उस दिन रात के लिए उन्होंने काकोरी कबाब बनाया, नवाब साहब को उतना ही पसंद आया जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था
1: कितना अच्छा बन जाएगा।
0: ये गोश्त का कबाब इतना अच्छा बनेगा जो जिसके लिए दांत की जरूरत नहीं पड़ी।
1: और ये सीख कबाब,
0: सीख कबाब थोड़ा सा हार्ड होता है, कीमा होता है बारीक कीमा, पर काकोरी कबाब के जैसा नहीं होता है। ये सीख कबाब आयरन रॉड पे लगा के ऐसे तंदूर में रोस्ट किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ जी,
1: आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है जिसे बनाना आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
0: ऐसे तो मैं पसंदीदा डिश मेरा एक है पनीर हजरत महल।
1: अच्छा, पनीर हजरत महल जो फलकनुमा में,
0: आज के डेट में जो फलकनुमा में बनता है।
1: जी जी।
0: एंड लेकिन मैं कोरमा बनाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, चिकन कोरमा, एंड उसके साथ खमीरी रोटी खाना बहुत पसंद करता हूँ।
1: खमीरी रोटी।
0: हाँ जी।
1: आजकल लोगों के खानों में आपको क्या तब्दीली नजर आती है?
0: सर, हमारे यहाँ अभी तीन जनरेशन चल रहा है।
1: जी।
0: जनरेशन वाइज अगर देखा जाए तो लोग जो टीनेजर्स हैं, जो 17-18 से लेके 25-26 तक के हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ गए हैं।
1: बहुत ज्यादा
0: हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते हैं उनको, चिकन बर्गर, पिज्जा, नूडल, पास्ता, मोमोज, इन सब चीजों, जबकि अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ भी बनता था, और पुराने जमाने में जो हम बोलते ना कि आज से 20 साल पहले रोटी की महत्व जो था, बेसन की रोटी, भाकरी की रोटी, इन सब चीजों में ग्लूटीन कम होता था। अब क्या है ना कि हम ग्लूटीन मैदे में बनता है, क्योंकि आप जब भी मैदा आप डो बनाओगे मैदे का, तो उसमें आप रबड़ जैसा फीलिंग आएगी, और जितनी बार आप खींचोगे फिर छोड़ोगे वो दोबारा हो जाता है। ग्लूटीन इस काइंड ऑफ चिंगम जो हम खाते हैं कभी खत्म नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो वैसे ही है, ग्लूटीन आप खाते हो आपके स्टोमक में कहीं पे भी जाके अटक जाता है, चिपक जाता है वो, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो गई।
1: हम लोग जिसे वो तंदूरी आजकल ले आते हैं आसानी के लिए, घर पे ना बनाने पड़े, तो ये कैसा है तंदूरी?
0: तंदूरी मींस सोया चाप, ये सब की बात कर रहे हो?
1: नहीं, तंदूरी रोटी होती है ना,
0: तंदूरी रोटी भी ऑलमोस्ट उसमें से चोकर निकाल दिया गया है। वो मैदा के
1: पहले फॉर्म
0: में जो जहाँ से मैदा स्टार्ट होता है बनना, गेहूं को पीस के ही मैदा बनता है, तो लास्ट फॉर्म जो आप रोटी देख रहे हो ना, जो ऑलमोस्ट मैदा के रूप में हो गया, आप रोटी आज के डेट में खा रहे हो, चोकर को हमने निकाल दिया, जिसमें की फाइबर होता है उस हमने हटा दिया है। आप चोकर वाला आटा यूज करो, आपके स्टोमक को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उतना ही फ्रेश रहोगे जितना फ्रेश खाना खा रहे हो उसके बाद भी। आप
1: हमारे घरों में भी ये होता है, जब हम आटा पिसाने ले जाते हैं तो कहती हैं कि, औरतें कहती हैं कि बहुत महीन आटा पिसो।
0: हाँ, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होता है ना सर, देखो जितना वो महीन होगा वो उतना रबड़ बनेगा। और
1: तो ये क्या फायदेमंद है या
0: नहीं है? नुकसान दे, क्योंकि ये ग्लूटीन फॉर्म में आता है। आप जितना दरदरा खाना खाओगे आप उतना ही अच्छा,
1: हमारे सेहत के लिए बेहतर
0: है। हाँ, सेहत के लिए बेहतर है। आप बाजरा खाओ, बेसन खाओ, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं है, इसमें वो रबड़ जैसा फॉर्म नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो नहीं है।
1: तो बावर्ची खाने में सफाई की कितनी अहमियत होती है?
0: सर, सफाई तो हर जगह होनी चाहिए, नॉट ओनली बावर्ची, ठीक है, लेकिन बावर्ची में बहुत ज्यादा हाइजीन का महत्व है। आपको हर चीज साफ सफाइयत रखना चाहिए। आप क्रॉस कंटिमिनेशन होने का ज्यादा चांसेस है, मतलब क्योंकि हर चिकन जैसे चिकन है उसका कैरेक्टर अलग है, आप अगर मटन पका रहे हो उसका कैरेक्टर अलग है, आप फिश पका रहे हो उसका कैरेक्टर अलग है, वेजिटेबल में भी अलग अलग वेजिटेबल्स के कैरेक्टर अलग है। आप एक साथ सबको रख दोगे तो सब कैरेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा बैक्टीरिया फॉर्म होगा वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है,
1: अच्छा
0: आप बीमार पड़ सकते हो। दूसरी चीज, आप खाना बनाने से पहले अपनी सफाई को सैनिटाइज करो, जिस जगह पे बना रहे हो, जिस बर्तन में बना रहे हो उसको अच्छी तरह से धो, क्लीन करो, फिर बार खाना बनाना स्टार्ट करो। फिर जब आपका खाना बन जाता है तो जिस बॉल में रखोगे उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करो, साफ करो, उसके बाद आप उसे रख के फिर अच्छे से ढक्कन रखाओ। खाने का भी एक टेम्परेचर होता है कि आप इतने से इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खाना खा सकते हो, इससे और इससे सेंटीग्रेड पे बैक्टीरिया लाखों करोड़ों के स्पीड में बढ़ता है। आप देखोगे कभी कोई खाना खाने के बाद किसी का स्टोमक अपसेट हो जाता है,
1: बिल्कुल होता है,
0: ठीक है, किसी को डायरिया हो जाता है, उल्टियां होने लगती है, ये बैक्टीरिया फॉर्म होने की वजह से ही होता है, जिसको हम
1: हमारे यहाँ कुछ खाने बचते हैं तो उसको फ्रीज में रख दिया जाता है, तो फ्रीज का

0: कैसा है?
1: सर फ्रीज में बैक्टीरिया, अगर फ्रीज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है
0: अच्छा
1: तो बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होता।
0: अच्छा
1: और
0: चार
1: आप,
0: डिग्री
1: हाँ
0: सेंटीग्रेड
1: हाँ लेकिन उसकी भी सर्टन टाइम है कि आप
0: जी
1: इसके बाद ही इतने दिन तक ही रख सकते हो या इतने देर तक ही रख सकते हो।
0: बिल्कुल
1: उसके बाद आप जब भी कोई खाना गर्म करते हो या पकाते हो तो आपको उसको 65 डिग्री एवव गर्म करना है।
0: 65 डिग्री
1: हाँ एवव गर्म करना है, उसके बाद ही वो खाना खाना
0: खाना
1: चाहिए,
0: नहीं चाहिए
1: ठंडा करके खाना नहीं चाहिए क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: बैक्टीरिया फॉर्म होता रहता है।
0: वो अभी ये कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग बाहर गए थे तो उन्होंने फ्रीज का ही चावल हम लोगों को खिलाया,
1: नहीं
0: होटल वालों
1: वो
0: ने,
1: नहीं नहीं
0: वो
1: वो
0: रखे हुए
1: गलत
0: थे फिर
1: बात
0: मेरे
1: है।
0: ख्याल से ला के रख दिया
1: नहीं
0: उन्होंने।
1: जो चीज़ें फ्रेश बननी चाहिए वो फ्रेश ही बननी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जो चीज़ें फ्रेश नहीं बननी चाहिए उसमें आपको वो खाना ही नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि आपका स्टमक खाना खाने के बाद अपसेट हो।
0: बिल्कुल
1: आप डायरेक्ट मना कर दीजिए कि मैं, आप हमें टाइम ले लीजिए, आप हमें फ्रेश खाना दीजिए बना के,
0: बिल्कुल
1: कोई बात नहीं। आप एक आधे घंटे की जगह पर आप 1 घंटा ले लीजिए बनाने में,
0: जी
1: लेकिन प्लीज मेक अ गुड फूड, हेल्दी
0: बिल्कुल।
1: फूड गुड फूड।
0: सर लखनऊ के पकवानों की कौन सी खसूसियत उन्हें दुनिया भर में मुनफरिद बनाती है
1: दुनिया
0: और
1: भर में
0: अलग
1: लखनऊ
0: बनाती है?
1: बहुत फेमस है,
0: जी जी
1: इनका जायका ये बहुत ही अच्छा
0: अलग
1: है,
0: है
1: अलग है।
0: जी
1: आप उतने ही प्यार, जितने तहजीब से यहाँ के लोग खाना बनाते हैं, जितने प्यार खाने में डालते हैं, उतना ही खाना हमें प्यार से परोसा जाता
0: परोसा
1: है।
0: जाता
1: हम
0: है।
1: खाने भी लोग यहाँ के बहुत ही ज़्यादा लखनवी फूड को प्रेफर करते हैं। नॉट ओनली मतलब लखनऊ के लोग, आप
0: जी
1: बाहर
0: जी
1: भी चले जाओगे तो आपको काकोरी कबाब, बिरयानी और गलौटी, ये तीनों चीज़ तो मिलेगा ही।
0: काकोरी कबाब, बिरयानी और गुलावटी,
1: गलौटी,
0: ये तीनों
1: हलावट
0: चीज़ें
1: कबाब, ये तीनों
0: कहीं
1: चीज़
0: भी मिल
1: आप कहीं
0: जाएंगी
1: भी
0: हमें
1: मिलेगा क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस चीज़ है सर।
0: जी।
1: लेकिन इतना आसान भी नहीं है, आप बिरयानी काकोरी और
0: बनाना
1: गलौटी
0: इतना आसान
1: बनाना
0: भी नहीं
1: बहुत है
0: जी
1: क्योंकि बहुत पेशेंस होता है, रखना पड़ता है इन तीनों को
0: जी
1: बनाने के लिए। आप स्ट्यू भी जाओगे तो आपको स्ट्यू भी मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड,
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: है। जो सुबह मॉर्निंग में स्ट्यू खाते हैं खमीरी रोटी के साथ
0: बिल्कुल
1: या फिर निहारी खाते हैं। अब पहले था कि निहारी आपको नेकल से बनता था, जो बकरे का पैर
0: पैर
1: होता है
0: होता था
1: उससे बनता था, जिसको हम निहारी गोश्त बोलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज के डेट में लोगों ने उसे भी चेंज करके निहारी गोश्त कर दिया
0: गोश्त
1: है।
0: भी कर दिया आ रहा है,
1: हाँ
0: इन्वेंशन कर दिया है
1: लेकिन निहारी का मजा तो निहारी में ही है,
0: पाए वाली
1: पाए
0: निहारी
1: वाले
0: जी
1: निहारी में।
0: जी अगर आपको किसी बैन अलावी शख्सियत के लिए खाना तैयार करने का मौका मिले तो आप कौन सा पकवान उनको पेश करेंगे और क्यों?
1: हाँ अगर मुझे चांस मिले किसी अच्छे
0: बड़ी
1: सेलिब्रिटी के
0: शख्स
1: लिए,
0: हाँ
1: बड़े शख्सियत के लिए या फिर जो आउट ऑफ इंडिया
0: कंट्री
1: से
0: है
1: आए
0: हाँ
1: हुए
0: जी
1: हैं उनके लिए, तो मैं लखनवी फूड जरूर बनाना पसंद करूंगा, उसमें भी कोरमा, बिरयानी एंड काकोरी कबाब।
0: अच्छा। नए शेफ्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जिसमें आना चाहते हैं कि हमें भी शेफ
1: नए
0: बनना है?
1: शेफ के लिए बस एक ही है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर फोकस होना चाहिए, कुछ करने की लगन होनी चाहिए
0: जी
1: कि आपको कुछ करना है और आपको फ्यूचर में कुछ बनना है। तो ये सब चीज़ें फोकस होनी चाहिए एंड
0: जी
1: नॉलेज कि आप किस तरह का शेफ बनना चाहते हैं, इंडियन बेस्ड शेफ बनना चाहते हैं या ओवरऑल वर्ल्ड कुजिन का शेफ बनना चाहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ाई स्टार्ट करो एंड उस पर आप पूरे फोकस के साथ काम करोगे, एक दिन आप जरूर एक अच्छा शेफ बनोगे।
0: बनोगे बिल्कुल। क्या आपने कभी किसी मुश्किल सूरत हाल में भी बेहतरीन खाना तैयार किया है? अगर हाँ तो तजुर्बा कैसा रहा आपका?
1: तजुर्बा मैंने बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया है
0: ये
1: एंड
0: मुश्किल ऐसा
1: तो
0: वक्त आ गया कि
1: उसके,
0: मुझे जल्दी से खाना बनाना है
1: हाँ मैं
0: और
1: कश्मीर जम्मू में था और
0: जी
1: मुझे अब्दुल्ला साहब के लिए खाना बनाना था। उनके प्रोटोकॉल बहुत होते हैं,
0: अच्छा
1: पहले उनका खाना चेक होता है एंड उसके बाद फूड इंस्पेक्टर खाना को चेक करते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी खाना चेक करते हैं, तब जाके वो खाना आप उनके वो में जा जोन में ही रह के आप खाना बना सकते
0: जी
1: हो,
0: जी जी
1: क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद वो चेक होने के बाद ही सर्व होता है। तो मुश्किलें आती हैं बट अच्छा लगता है कि मैंने, आई फील प्राउड कि मैंने उनके लिए भी खाना बनाया
0: खाना
1: है।
0: बनाया। मुख्तलिफ रियासतों या मुल्कों के खानों में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर करती है?
1: सबसे ज़्यादा है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड प्रिपरेशन, वहाँ के लोग बहुत मायने रखते हैं, जो कि आपको बोलते ना इंडिया का
0: जी
1: धरोहर है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का खाना है, कि आप खाना अगर दिल से बना रहे हो तो
0: जी जी
1: खाना अच्छा ही बनेगा और
0: बिल्कुल
1: आप पूरा वर्ल्ड सर्च कर लोगे। हर घर में शेफ नहीं मिलेगा पर इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर
0: हर
1: घर
0: जगह शेफ
1: में
0: मिलेंगे,
1: शेफ,
0: हर
1: हर घर में
0: घर
1: शेफ
0: में
1: है,
0: शेफ है सही बात
1: किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की
0: जी
1: माँ है, उनको पता होता है कि मुझे खाना किन के लिए बनाना है
0: बिल्कुल
1: और वो पूरा पूरे शिद्दत के साथ, तहजीब के साथ, दिल से खाना बनाती हैं। और
0: बिल्कुल
1: आप किसी के भी घर में चले जाओ कोई नहीं बोल सकता कि आपके घर का खाना अच्छा नहीं है,
0: अच्छा नहीं बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: कभी चेक नहीं करते शेफ की तरह के खाना
0: बिल्कुल
1: हमने बनाया और चेक करना है। मैं उनसे बड़ा शेफ किसी को नहीं मानता, एक माँ जो फीलिंग से खाना बनाती है उनको पता
0: बिल्कुल
1: होता है कि मेरे बच्चे को क्या खाना पसंद है या मेरे शौहर को क्या खाना पसंद है,
0: बिल्कुल
1: वो खाना कोई नहीं बना
0: नहीं
1: सकता।
0: बना सकते बिल्कुल। सर हमारे सामने

0: इनको कोई ऐसी डिश बनाना सिखाएं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद हो, उसके क्या क्या लवाजमात हैं, सब चीजें बताइए।
1: सबसे अच्छा जो जो पसंद करता हूँ, घर में पराठे बनते हैं
0: जी जी।
1: आप उसमें पराठे बनाने के लिए आटा का यूज करते हो, घी का यूज करो, अजवाइन का यूज करो, हल्का सा सॉल्ट,
0: मतलब सादे पराठे की बात करें,
1: सादे पराठे की बात, उसके साथ आप स्ट्यू खा सकते हो, उसके साथ आलू का भुजिया, बैंगन का भुजिया, मिक्स वेज खा सकते हो। सादा पराठा इज गुड फॉर हेल्थ। आप उसमें जैसे अजवाइन यूज करोगे तो अजवाइन पाचन क्रिया को बढ़ाता है,
0: बिल्कुल।
1: और सबसे अच्छा चीज बोला जाता है कि आपको डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उसमें अजवाइन का यूज करो। डो को गूंथते समय जैसे आटा लिया, सॉल्ट डाला, हल्का सा अजवाइन डाला, उसके बाद अच्छा सा पानी डाल के डो बनाइए, उसको फिर आप 3 लेयर में आप उसे बेलिए, और हर परत में आप अपना घी यूज कीजिए, शुद्ध घी,
0: शुद्ध
1: मिलावट वाला नहीं।
0: जी जी, जो घर पे बनाते हैं,
1: जी घर में जो बनता है घी वो आप यूज करो
0: जी।
1: एंड फिर उसके बाद तवे के ऊपर सेक के आप उसको प्यार से दाल के साथ खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, जो खाना, जो सब्जी आपको पसंद है, वेजिटेरियन खाना तो वो हेल्दी रहता है,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। लंच आप अपने अनुसार खा सकते हो, मटन भी खा सकते हो, चिकन भी खा सकते हो, हेल्दी होता है,
0: बिल्कुल। एक शेफ की रोजमर्रा जिंदगी कितनी मसरूफ होती है?
1: अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि हर दिन हमें नए गेस्टों से मिलना पड़ता है, हर दिन हमें नए लोगों से मिलना पड़ता है, और इंडिया में ऐसा है कि सबका टेस्ट अलग होता है,
0: बिल्कुल,
1: एंड उनके टेस्ट के अनुसार हमें खाना बनाना पड़ता है। पर टफनेस तब आती है कि एक ही टेबल पे 10 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने एक ही चीज का ऑर्डर किया। अगर वो अब लोग हैं, सारे जगह से लोग आए हुए हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई लखनऊ से हैं, कोई हैदराबाद से हैं, और ईच एंड एवरी पर्सन का टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उनका जायका ही अलग है,
0: बिल्कुल।
1: और मुझे अगर बोला जाए कि आप एक स्ट्यू बनाओ, लखनवी स्ट्यू, तो मैं तो रेसिपीज को, खानों को उसी रेसिपी से बनाऊंगा जो मुझे पता है, जो चीज़ बनता है लखनऊ में,
0: बिल्कुल।
1: बट लखनऊ से वो फूड सर्व किया जाता है, पर जो स्पाइसी खाते हैं उनको वो स्ट्यू पसंद नहीं आएगा,
0: बिल्कुल सही बात।
1: अब अगर हैदराबाद के लोग हैं, उनको मैं लखनवी बिरयानी खाने के लिए बोलूं कि सर आप ट्राई करो,
0: तो
1: वो यही बोलेंगे कि क्या इतना फीका खाना है, जबकि लखनवी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी से लाख गुना अच्छा,
0: बेहतर है,
1: बेहतर है, सेहत के लिए भी अच्छा है, उसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, रॉयल है, और फिकनेस बहुत ज्यादा है उसमें, क्या है कि आप यहाँ खाना बनाओगे तो दोपहर छोड़कर फिकनेस जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो पता चलता है कि किसी के घर में आज के डेट में
0: क्या
1: मेहमान नवाजी हो रहा है और बिरयानी बन रहा है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो वो है सर, तो ये सबसे बड़ा टफनेस है कि हमें उनको सेटिस्फाइड भी करना है और दिल से भी सेटिस्फाइड करना है, खाने के साथ भी सेटिस्फाइड करना है।
0: अपने करियर का कोई यादगार वाकया हमारे सामने के साथ आप शेयर कीजिए।
1: वाकया तो सर बहुत सारे हैं,
0: जो सबसे अहम हो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो हमारे सामने के साथ शेयर करें।
1: अब मैं एक पार्टी के लिए गया हुआ था
0: जी,
1: और 15 अगस्त का दिन था, और मुझे इस सिटी से दूसरे सिटी में जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखना पड़ता है, बट थैंक्स टू सिस्टम की सिस्टम ने अलाउ कर दिया और हम अपनी जगह से सफल करके दूसरी जगह पे खाना बनाने के लिए गए, लेकिन एक और टफनेस हो गया कि दिन के जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ बारिश स्टार्ट हो गया, और वो शुक्र था कि जो जिसमें हम खाना सर्व कर रहे थे वो वाटरप्रूफ था,
0: अच्छा,
1: बट बहुत मुश्किल से होता था कि खाना हमें शिफ्ट करना है, खाना लगाना है, फिर जैसे ही रिफिल करना है खाना, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, बट सारे लोगों की टीम, हमारे टीम और हम वहाँ की टीम जो कंपनी थी वहाँ पे, सबने मिलकर
0: मैनेज किया,
1: पार्टी को सक्सेसफुल बनाया
0: जी। तो आखिर में आप हमारे सामाइन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह का खाना खाएं जिससे वो तंदुरुस्त और सेहतमंद भी रहे?
1: सर जहाँ तक मैं फील करता हूँ, हमें हमारे को हैप्पीनेस, खुश रहना बहुत जरूरी,
0: बिल्कुल,
1: खुशी इज रिक्वायर्ड, खुशी तो तब आती है जब आप अच्छा खाना खाओगे,
0: अच्छा खाना खाएंगे,
1: क्योंकि जैसे एक अच्छे कार को चलाने के लिए अच्छे पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए एक अच्छा खाना
0: जरूरी
1: है, क्योंकि पूरे दिन हम मेहनत करते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हमारी सोच अच्छी नहीं होगी,
0: बिल्कुल सही बात,
1: हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरा गुजारिश है सभी से, सभी लोगों से, लखनऊ वासियों से भी, ऑल ओवर द इंडिया जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज आप हेल्दी खाना खाइए और खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब, यकीनन हमारे सामाइन ने आपके तजुर्बात, मशवरों और ख्यालात से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने तजुर्बात, मालूमात और दिलचस्प बातों से हमारे सामाइन के इल्म में इजाफा किया, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: बहुत बहुत मेहरबानी, होप कि आप हमारे बातों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: नमस्कार
0: सामाइन, आज के माहाना प्रोग्राम जायका में बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगले महीने

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं डॉक्टर संध्या गुप्ता और साथी। आइए सुनते हैं सबसे पहले इनके स्वर में ये गंगा गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संध्या गुप्ता और साथियों का गाया गंगा गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये दादरा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में दादरा। आज के कलाकार थे डॉक्टर संध्या गुप्ता और साथी। लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH वेव्स, OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में आपको सुनवा रहे हैं आज का पहला गीत, फिल्म धर्मात्मा से। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है कंचन और मुकेश की।

धर्मात्मा से सुन रहे थे आप ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं से। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है आर डी बर्मन का और आवाजें हैं सुषमा श्रेष्ठ और मोहम्मद रफी की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम किसी से कम नहीं से ये गीत। अगला गीत सुनिए फिल्म जूली से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राजेश रोशन का और आवाज़ है किशोर कुमार की।

फिल्म जूली से सुन रहे थे अभी आप ये गीत। अगला गीत सुनिए फिल्म हिमालय की गोद में से। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ दी है मुकेश ने।

फिल्म हिमालय की गोद में से सुन रहे थे आप ये गीत। आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म मेरे जीवन साथी से। गाने के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और आवाज़ है किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे जीवन साथी थे ये गीत। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको फिल्म पत्थर के सनम से। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ है मुकेश की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगम से। गीत के बोल हैं शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के, संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज़ें हैं मुकेश और वैजयंती माला की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगम से ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से। गीत के बोल हैं इंदीवर के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है महेंद्र कपूर की।

फिल्म पूरब और पश्चिम से सुन रहे थे आप ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत है इंदीवर का, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है मुकेश की।

फिल्म सरस्वती चंद्र से सुन रहे थे अभी आप ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रजनीगंधा से। बोल हैं योगेश के, संगीत है सलिल चौधरी का और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

फिल्म सरस्वती चंद्र, फिल्म रजनीगंधा से सुनवा रहे थे आपको ये गीत। अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म ब्रह्मचारी से। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

फिल्म ब्रह्मचारी से सुन रहे थे अभी आप ये गीत। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कटी पतंग से। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है आर डी बर्मन का, आवाज़ है मुकेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स डीटीएच डीएम, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTS DRM 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं और समय हो चला है आपके अपने ईमेल पर आधारित हमारे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का। और आज ये कार्यक्रम आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

के कार्यक्रम का आरंभ आइए करते हैं दाग फिल्म के इस गीत से। आवाज है किशोर कुमार की, साहिर का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगी। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव की। साथ में हमारे कई और श्रोता भी इस गीत को सुनना चाहते हैं, जिसमें नगर कोहका जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। और इसी गीत को बगबुड़विया पथरिया छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने भी सुनना चाहा। मजनू का टीला से इस गीत की फरमाइश की कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्षी ने भी इस गीत को सुनना चाहा। साथ में है गांव जाखोट से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक और खटक परिवार के सभी सदस्य। रोहांसी छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू ने। और कंवर कॉलोनी बड़वास जिला खारगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली के साथ मीना श्रीमाली ने भी इस गीत को सुनना चाहा। कोल सिटी बरकाकना से हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे श्रोता रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्ही अवनिका और साथ में है तनुश्री गुप्ता जी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने भी इस गीत की फरमाइश की। यही गीत रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूल कमर राही और बेगम रुखसार रकीबा साहिन, तूबा आफरीन और शाहिद हसन आजमी के साथ साथ शमीम अख्तर अंसारी ने भी सुनना चाहा। छत्रपति सांभाजी नगर से हमारी श्रोता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और इसी गीत को पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह ने भी सुनना चाहा। ग्राम पंचायत

बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेश वर्मा और मुरली खूबचंद वर्मा। और खंडवा से हमारे श्रोता हैं संदीप कौर और दुर्गा कौर। इसी गीत के लिए फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ की। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हमारे श्रोता हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और तनुश्री श्याम कुंवर। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनाते हैं आपको ये गीत।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना दाग फिल्म का ये गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

अगला गीत 20 साल बाद फिल्म से। इस फिल्म का ये गीत गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल। चकिया बाजार जिला चंदौली से हैं सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, सुभाष जायसवाल और शिवांश जायसवाल। और साथ में शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन रजक, लालू सोना मोना, हनी यश और आपके मम्मी पापा। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। ऊंची भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, मधु गोस्वामी, अनु गोस्वामी और आशा गोस्वामी। ग्राम व पोस बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से माखन सिंहपाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और आदि जैन। बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और सौर्य नामदेव। बेवरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से हैं शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा। मुक्कमपोस फूल चिंचौली तालुका पंढरपुर से हमारे श्रोता हैं जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और सारा मुलाड़ी परिवार। और ये हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बरबू। आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। पानी टंकी परेवा जौनपुर से हमारे श्रोता हैं रॉकी, बमबम, माना और रिंकू। साबतपुर छत्तीसगढ़ से हैं ऋषि सेन, रितेश सेन। सदर बाजार मारवाड़ बिडाला राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे श्रोता हैं अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। पिपरिया जिला कबीरधाम से हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में 20 साल बाद फिल्म का ये गीत आपने सुना। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में घर फिल्म का एक गीत। रचना है गुलजार की और संगीत राहुल देव बर्मन का और पसंद आप सब श्रोताओं की। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय के साथ साथ इस गीत को दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने सुनना चाहा। साथ में हमारे और भी श्रोता हैं जो ये गीत सुनना चाहते हैं। बागपर उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार। गांव और डाकघर निमनाबाद जिंद हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, राघव कुमार, आशा देवी और भानुप्रिया। रजई पोस्ट उगापुर भदोही से हमारे श्रोता हैं पप्पी यादव, ललितचंद यादव, बबलू यादव और सुनील यादव के साथ साथ लवकुश यादव। भानवेड़ा मंगलवाल से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी, भरतराम पटौदी और जयंती पटौदी। नरेश शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक शर्मा हमारे श्रोता हैं कलानौर से। वार्ड नंबर एक पोफाली से हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। एयरपोर्ट वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कीर्तिका खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। बलहार शाह से हैं सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े।

संबलपुर कांकेर से हैं फागु यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं घर फिल्म के इस गीत को।

इसी गीत की फरमाइश की ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा ने भी। रामनतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से हमारे श्रोता हैं गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर।

ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से हमारे श्रोता हैं बुनकर आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो और गुड़िया बानो, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया हैं तेलंगाना भोंगीर से।

667 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयबीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभ्रचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, अहमदनगर बजट यहाँ से बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं राम टेके, यशोधरा राम टेके और श्रव्या राम टेके, बटिंडा रोड डबलवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और आपकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है 9-2-11।

हमसे कुछ न बोल। 9-11 के बाद आइए सुनते हैं नसीब फिल्म का एक गीत। इस गीत में आवाजें हैं अनवर कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सब श्रोताओं की। जमानी जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांती, तृप्ति थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती और बेबी वमिका के साथ वाणी थांती। ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक, जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनकरा, सोनम सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और सचिन चौहान के साथ साथ रामसरा वाले समस्त सोनगरा परिवार के लोग। उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से बालूअप्पा धड़बले, ज्योति धड़बले, शिव सुंदर धड़बले, आराध्या धड़बले। हलौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी। पद्मा टॉकी नेफा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके और प्रतिभा गोंडाने। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। पिपरिया बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से हैं शिवानी कुमार सिन्हा, प्रियंका कुमारी सिन्हा, अभय कुमार सनातनी। और साहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। बड़ी केबी चौराहा वाराणसी।

से हमारे श्रोता हैं श्री त्रिभुवननाथ मालवी, अनमोल मालवी, श्लोक मालवी और समस्त मालवी परिवार। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलमा अजीम।

चंद्रनगर सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी। बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। धरारा पजड़िया वाराणसी से हमारे श्रोता हैं एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान अंसारी और साथ में सलीम आज़ाद अंसारी, इकबाल अंसारी और श्रवण कुमार। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से शिवनाथ साहू, पंकज साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं नसीब फिल्म के इस गीत को।

0: की जान लेती।
1: दोस्ती पर ये खूबसूरत गीत के बाद एक आइए सुनते हैं और प्यारा सा गीत। गुलामी फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलजार की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीन। और इस गीत की फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान ने, साथ में ही साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद नवाज, मीफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष, और रस्तुतपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज, गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और इसी गीत की फरमाइश है मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूँ जिला जौनपुर से इरशाद एवन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावीद इरशाद, अजरा तबस्सुम, और आपके साथ हैं हमारे श्रोता अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। चंद्रानगर अंबाला से हैं कृष्णा कुमारी, बीना कुमारी, सोनाली और डोली कुमारी। संजय अशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बीबी नुसरा खान। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत पटवा और क्रिस्ट्री पटवा। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और मुस्कान मेहरा जी। अहमदनगर बजड़िया वाराणसी से बदरुद्दीन अंसारी, मुस्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी।

ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਮੜੀ ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਾਰੰਗ, ਅੰਜੂ ਨਾਰੰਗ, ਮੋਹਿਤ ਨਾਰੰਗ ਔਰ ਤਾਨੀਆ ਨਾਰੰਗ। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन। धानौरा वटाली तहसील नांदुरा जिला बुलडाला महाराष्ट्र से हैं भगवान पाटिल और सचिन पाटिल। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हैं अनीस राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। तहसील रोज गंज डुंडवारा से हैं के एच राही, गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी के साथ साथ हमाद जमील। तो आप सबकी फरमाइश पर ये गीत सुनते हैं हम।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजकुमार फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। बिहारी कॉलोनी सहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन, आशीष राजा चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना, पानीपत हरियाणा से एक अनिल कटारिया मंजू कटारिया नरेश मल्होत्रा और ज्ञानभूषण शर्मा, रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से पप्पी यादव ललितचंद यादव बबलू यादव और सुनील यादव, पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू नंदनी साहू मनीष साहू और शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेश खोबरखेड़े शिवसागर खोबरखेड़े इंदिरा ताई खोबरखेड़े सुनैना दीपाली स्वराज और तनुज और मल्हार सहारा स्टेट जानकीपुरम लखनऊ से ही स्वाति द्विवेदी अजय सताक्षी द्विवेदी और अधक्या द्विवेदी और राजकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ सादुल शहर राजस्थान से हमें इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं। ग्राम भोइना पर लाटा रोड जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी साहू उमाबाई और गंगाराम साहू, दिल्ली नानक लोई से हैं राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया कृष्णा जटोलिया पूजा जटोलिया कोमल जटोलिया आरव जटोलिया, वृंदावन कॉलोनी माहेश्वर से हैं दीपक गुप्ता सुनीता विवेक निशी और आशुतोष। आइए सुनते हैं इस गीत को।

इसी गीत को पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा भी सुनना चाहते हैं। चांदनी चौक गंडई परी पडेरिया छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार और चंद्रकला। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण और साई गायकवाड़। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, करुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूं
2: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गाँव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
2: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
2: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
2: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
2: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
2: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं।

0: श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उत्सव में लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को, पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
3: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
3: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
7: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
3: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णु दत्त का ही है।

0: पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
1: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
2: महाराज की जय! महाराज की जय!
3: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
4: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
3: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
5: आज मैं राजा बनूंगी।
6: आज मैं राजा बनूंगा।
7: आज तो मैं राजा बनूंगा।
8: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
0: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
5: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
9: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
5: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
9: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
6: हमने तो देखा है।
10: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
5: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
9: महाराज की जय हो।
11: जय हो।
9: महाराज की जय हो।
11: जय हो।
3: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
12: महाराज महाराज जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
13: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
3: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
14: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
13: चोरी।
3: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
13: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
14: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
3: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
14: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?

0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा।

0: राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया।
2: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
5: क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
6: अरे मशकूब भाई,
7: जी जनाब,
6: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
7: लीजिए जनाब।
6: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
7: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
6: रखो रखो।
7: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
6: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
7: शुक्रिया,
6: शुक्रिया।
5: अमृत वाला आ गया।
8: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
9: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
6: मशकूब भाई,
7: जी जनाब,
6: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
7: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए, पीजिए, पीजिए।
6: लाओ। बस बस,
7: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
6: सही कहा मशकूक भाई,
7: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
6: अभी तक तो कुछ नहीं।
7: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
6: अरे नहीं नहीं
7: नहीं, नहीं आप आइए, आइए जनाब, आइए आइए आइए।
6: भाई
7: जी,
6: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
7: क्या बात करते हैं,
6: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
7: इसमें नेकी की क्या बात है?
3: आपकी

0: मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: ये तो मेरा फर्ज था।
0: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
0: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
0: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
2: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
3: जनाब,
4: लाजवाब इंसान है वो।
3: क्या बात करता है,
4: बहुत अच्छे इंसान।
5: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
6: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
5: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
6: पैसा लाए हो?
7: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: मुंह उठाए खाली आप चले आते हो।
7: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
7: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
7: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
7: मर जाएगा ये।
8: उठाओ,
7: मर जाएगा हकीम साहब।
8: चलो निकलो बाहर।
5: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
9: अमृत वाला आ गया, क्या हो?

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बादस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं।
1: मगर

0: वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
1: अरे तो क्या हुआ?
0: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
1: क्या क्या कहते हैं आप?
0: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
1: अच्छा,
0: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
1: जी जी जी जनाब।
0: आप लीजिए ये किताब।
1: ये किताब किस लिए?
0: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
1: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
2: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक।
2: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
2: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
0: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे आप सुगम संगीत।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान

0: दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
1: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, आइए सुनिए सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं लोकेश शुक्ला। कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत है आपके स्वर में सूरदास की ये रचना।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज के कलाकार हैं लोकेश शुक्ला। अभी आपने सुना सूरदास की इस रचना को आपके स्वर में। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं तुलसीदास की रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे लोकेश शुक्ला। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनें वायलिन वादन। कलाकार हैं डॉक्टर आरपी शास्त्री। राग है मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगति नंदकिशोर मिश्रा की।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे डॉक्टर आरपी शास्त्री, राग था मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगति थी नंदकिशोर मिश्रा की। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद

0: नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले आइए देते हैं हम खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार अंशिका, जो पुत्री हैं कृष्णकांत की, निवासी है झकाही मोरसीम थाना करमा सोनभद्र की, और साथ में अंकिता है जो पुत्री है कृष्णकांत झकाही मोरसीम थाना करमा सोनभद्र की ही। अंशिका की उम्र है 17 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच है और रंग गोरा है, चेहरा गोल है। और अंकिता की उम्र है 16 वर्ष, लंबाई 5 फुट के करीब है, रंग गोरा है, इनका भी चेहरा गोल है। ये दोनों बहनें 19 अप्रैल सन 2026 दिन में 1 बजे से लापता हैं। घर से सिलाई सीखने को कहकर गई थी और लौट के नहीं आई। घटना वाले दिन अंशिका की उम्र की का पहनावा मैरून सूट था और अंकिता का पीला सूट। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो कृपा कर थाना करमा सोनभद्र को सूचना देने का कष्ट करें, अथवा अपने नजदीकी थाना को भी आप सूचना दे सकते हैं। ये अगली सूचना रेखा देवी के संबंध में है, जो पत्नी है रामपति की, निवासी है ग्राम व पोस्ट बरखना गहरवार थाना ड्रमगंज हलिया तहसील लालगंज जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की। रेखा देवी की उम्र है 35 वर्ष, लंबाई 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये 22 मई 2026 शाम 5 बजे से लापता हैं। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो कृपया कर अपने नज़दीकी थाना या थाना ड्रमगंज हलिया तहसील लालगंज जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को सूचना देने का कष्ट करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। और कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको दे देते हैं संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। संसद समीक्षा का प्रसारण होगा रात 8 बजे और कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम लेकर आएंगे शाम 4 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का आनंद आप ले सकते हैं अंजुमन कार्यक्रम में रात 9:30 पर और कहकशा में दिन में 2:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा वीणा वादन, कलाकार होंगे डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा और बातचीत का विषय होगा दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारियां और इसका इलाज।

0: इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर एक ही प्रसाद से। साथी किसान भाई सुनेंगे, लोकगीत कलाकार होंगी डॉक्टर संध्या गुप्ता। डॉक्टर संध्या गुप्ता के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, जिसमें होगी मेरी पसंद, आज की बात, इतिहास में आज का दिन, सूचना और जानकारी, और आपके फरमाइशी गीतों को लेकर हाजिर होंगे आपकी सेवा में रात 10 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। सिंधी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा धरती के गीत, और अब से थोड़ी देर बाद यानी दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम अंगनैया में बहनें सुनेंगी बातचीत। विषय होगा महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या, कारण और समाधान। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर गरिमा उपाध्याय से। ये कार्यक्रम होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अंगनैया। साथ में बहनें सुनेंगी गीत संगीत और कुछ टिप्स भी। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:00
1: लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों की फलाह व बहबूद और मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम पेपर लीक केसेस के ट्रायल को तेज़ करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी और जिम्मेदारों के लिए तेज़ तरीन और सख्त तरीन सज़ा को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमों को ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले फैसलों के सिलसिले में ये एक अहम कदम है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मामला है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक संगीन मसला है जो ईमानदाराना और जामे बहस का मुस्तहक है। JP नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी एहतजाज पर तश्वीश का इजहार किया। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि मरकजी हुकूमत नौजवानों के जज्बात और खदशात के तई हसास है।
2: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
3: इस दरमियान नीट इम्तिहान के पेपर लीक और दीगर मसाइल पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ईवानों की कार्रवाई आज भी मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मानसून इजलास के पहले दिन नीट पेपर लीक के मामले पर बात करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहस के लिए कवायद तय किए जाने चाहिए।
4: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया है सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
3: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 14 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अवामी सहूलियात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़्म को नई तहरीक फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तरक्याती प्रोजेक्ट अवामी सहूलत, अवामी एतमाद और तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश के अज़्म का ताकतवर इजहार हैं।
1: تقریب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے گورکھناتھ مندر میں جن

0: गीता दर्शन के दौरान तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुनासिब कार्रवाई की हिदायत दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग कल अयोध्या के श्री मनीराम दास छावनी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट ने वाजह किया कि राम भक्तों का अकीदा पहले की तरह मजबूत है और मंदिर में आने वालों की तादाद मुसलसल बरकरार है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंतखाब के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने दरख्वास्तों की बड़ी तादाद और अमल की संजीदगी को देखते हुए एक माह के इजाफी वक्त की दरख्वास्त की थी, जिसे ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। उस वक्त तक इंतजामी काम को हमवार रखने के लिए सेक्रेटरी की तकर्री को भी मंजूरी दे दी गई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डिवीजनल कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ हफ्ता वाराना जायजा मीटिंग की सदारत की। इजलास में मर्दमशुमारी 2027 और असातजा के लिए चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम समेत मुख्तलिफ अहम स्कीमों के पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जैसा कि वजीर आला ने ऐलान किया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातजा को चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत लाया जा रहा है। इस स्कीम का बाकायदा आगाज 26 जुलाई को वजीर आला के जरिए आगरा से होना है। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक रियासत में बाज मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बारिश की वजह से रियासत की कई अजला में नदियां तिगयानी पर हैं। शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुँच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया ने हिंदन और यमुना नदियों में सैलाब के इम्कानात के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। थोड़ी देर में बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: अंगने या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते, और इमरती बहन तोहरों के नमस्ते।
6: नमस्ते हो लाली, नमस्ते। और कहीं लाली कि देखा आज हम लोग बत कही कही जाए, लेकिन अपने स्टूडियो में आए रहे डॉक्टर बहन, पहले इनका स्वागत कर लेवल जाए।
5: अरे स्वागत तो करल जाए, लेकिन बहनी लोगन के तो बता दी हल जाए कि आज हेलो अंगनैया कार्यक्रम का प्रसारण हुई, जे मन बहनी लोगन फोन के माध्यम से जनिया जानकारी का बात, और जानकारी का विषय जौन है वह महिला और बच्चन में कुपोषण का जौन समस्या बढ़ल जात है, एकर कैसे समाधान कइल जाए, एकर कारण का है, लक्षण का है, और यही कुल विषय पर तो बत कही करे बदे हमन गरिमा उपाध्याय बहनी के बोलौले है, ई आहार विशेषज्ञ हैं। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत ही।
6: धन्यवाद। हम कहीं लली।
5: हाँ हो।
6: कि देखा अब सावन का महीना भी चलत हो, लेकिन ये सावन के
5: अरे चलत
6: तो के देख के तुम हरियाए जाइला हमेशा।
5: सावन आवे वाला हो, सावन का महीना नहीं चलत, बरखा बुन्नी से तू तनी भरम में आ गई लो, यही से तू कह दे।
6: नहीं हम हरियाली देख के आईनी है ना भरे से, यही से तो के देख के हरिया गईनी है।
5: तो देखा हो आज तो जब कुपोषण पर बात होता तो पहले बहनी से यह प्रश्न कह ले हल जाए कि बहनी ये बताएं कि कुपोषण का समस्या होला का, कुपोषण माने कौने स्थिति में समझें कि महिला चाहे बच्चा कुपोषित होता।
7: इस अंगनैया कार्यक्रम को सुनने वाली सभी बहनों को गरिमा उपाध्याय का नमस्कार। और जैसा कि अभी पूछा गया कि कुपोषण का क्या अर्थ है, सामान्य तौर पर हम लोग समझते हैं कि जो दुबलापन है या भोजन नहीं मिलना, भूखा रहना, ये कुपोषण है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुपोषण का बहुत व्यापक अर्थ है। जैसे किसी व्यक्ति को उसके जो आवश्यकता है, उसकी उम्र, उसके लिंग और उसके व्यवसाय के आधार पर जो भी उसकी ऊर्जा और पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, वो अगर पर्याप्त मात्रा में और संतुलन में न मिले तो उसको कुपोषण कहा जाता है।
5: अच्छा, तो कैसे चिन्हे गया? बहुत लोगों के अंदर तो बहुत ऊर्जा नहीं रहे ले, लेकिन हाँ। तब वो मोड जोड़ दिखाई दे लन।
6: हाँ। अरे एक बात और कहें कि जैसे बहुत दुबला पतला भी हम लोग तो भी कहना कि भाई कुपोषण, लेकिन वो काम धाम अपन बढ़िया से करना है, तो कैसे समझ जाए कि कुपोषण का शिकार हूँ?
7: हम लोग सबके अपने अपने धारणा होती है, सबके अपने अपने, किसी को दुबला व्यक्ति सही लगता है, किसी को मोटे होने से हम समझते हैं कि वो स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुपोषण के जो हमारे देश में स्थिति है वो एक तरह से त्रिपक्षीय बोझ है, जिसमें कि अल्प भार भी आता है, जिसमें कि वजन कम होना, दूसरा पक्ष देखें तो वजन बहुत अधिक होना, मोटापा भी कुपोषण का पार्ट है, और तीसरा जो है आजकल जो देखा जा रहा है कि विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जैसे महिलाओं में आयरन की कमी, लौह तत्व की बहुत कमी होती है, उनमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया कहते हैं जिसको। बच्चों में अगर देखा जाए तो उनका वजन कम होता है, उम्र के अनुसार उनका वजन नहीं होता है, उम्र के अनुसार उनकी ग्रोथ नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है, और हो रही है तो लंबाई के अनुसार उनका वजन नहीं।

0: तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे सूचक हैं जिससे हम
1: हम्म,
0: पहचान पाते हैं कि कोई कुपोषित है या नहीं है। तो बच्चों में अगर देखें तो उनका वजन एज के साथ, उम्र के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनकी लंबाई उम्र के साथ बढ़ रही है
1: जी
0: कि नहीं, और लंबाई के साथ उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, इस तरह के ये तीन सूचक हुए।
1: हम्म,
0: उसी तरह महिलाओं में देखा जाए कि उनके जो आदर्श वजन, उनके लंबाई के ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन आदर्श है कि नहीं है, या उनका जैसे टेस्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, रक्त की कमी जिसको कहते हैं, तो उनमें काम करने पे सांस फूलने लगना, थकान हो जाना, तो
1: जी
0: ये सब सूचित करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो महिला है कुपोषित है।
1: अच्छा, तो जब आप कुपोषण का बात बतावत हैं तो इहो बताई बहनी लोगन कि अपने देश में का स्थिति है, कितना प्रतिशत लोग कुपोषण से बचल होंगे।
0: अभी हमारे देश में अगर कहा जाए तो इधर के समय में हमारे देश में बाल और महिला पोषण में स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ चुनौतियां हैं अभी भी। जैसे अगर अभी हम महिला की स्थिति देखें तो महिला में अभी भी लगभग 50% महिलाओं में एनीमिया है,
1: जी
0: खून की कमी है। 50% से अधिक बच्चों में भी अभी भी एनीमिया है। और अगर हम देखें तो इधर के समय में जो जन्म के बाद जो बच्चों को माता का दूध
1: एक
0: दिया
1: के फोन
0: जाता
1: आवा
0: है,
1: था
0: हाँ
1: बहनी।
0: लली देखा फोन आ था। हाँ भैया बताएं कि आपका नाम कहा, आप कहाँ से बोलत हुए।
1: हेलो,
0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ संपर्क नहीं हो पावा था श्रोता भैया से। हाँ हेलो, संपर्क नहीं हो पावा था।
0: माता का दूध
1: एक
0: दिया
1: के फोन
0: जाता
1: आवा
0: है,
1: था
0: हाँ
1: बहनी।
0: लली देखा फोन आ था। हाँ भैया बताएं कि आपका नाम कहा, आप कहाँ से बोलत हुए।
1: हेलो,
0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ संपर्क नहीं हो पावा था श्रोता भैया से। हाँ हेलो, संपर्क नहीं हो पावा था। हाँ आप बताइए अपन।
0: तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारे देश में कुपोषण की क्या स्थिति है, तो देखा जा रहा है कि महिलाओं में और बच्चों में 50% से अधिक में अभी भी एनीमिया है, खून की कमी है, और ये स्थिति जो है गर्भावस्था में और भी भयावह रूप ले लेती है, जिससे कि माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को खतरा भी हो जाता है।
1: अच्छा, एकर कारण का हो।
0: आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि जो न हो
1: हाँ
0: कि हम लोग के यहाँ जो कुपोषण का समस्या होला, ये समस्या काहे होला, जैसे बच्चन में हो या महिला लोगन में हो, कि ये कुपोषित काहे हो जाने। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कुछ कारण जो सामान्य कारण है, और हम किसी के लिए भी, महिला के लिए भी और बच्चे के लिए भी कुछ।
1: आपके रोकल चाहा देख के
0: हाँ
1: फोन
0: अच्छा
1: आवा था।
0: लली,
1: हेलो हेलो,
0: हेलो लो तो लाली संपर्क ना पावत हो।
1: फोन आवा था लेकिन हमने तक बात नहीं पहुंचा था उन लोगन का। हेलो,
0: हाँ तो आप
1: हाँ
0: बताओ तो नहीं है कि काहे कुपोषण का हाँ
1: समस्या हो जा
0: कारण
1: रहा।
0: अगर हम देखें तो
1: जी
0: पहले हम एक सामान्य बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि अपर्याप्त भोजन। जी क्या होता है कि हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन संतुलन है कि नहीं है, हमें लगता है कि पेट भर गया तो हमारा भोजन हमें मिल गया, इतना ही चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो जो पोषक तत्व चाहिए, हमारे भोजन में विविधता नहीं है। कहीं पर देखिए आपके चावल खाने का प्रचलन है, कहीं गेहूं का बहुत है, लेकिन दाल सब्जी क्या हम सही अनुपात में ले रहे हैं? ऐसा
1: जी
0: नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही बात करती।
0: तो एक तो ये कारण हुआ।
1: कहीं कहीं तो देखल जाला कि अगर भूख लगा था तो चारों टाइम भात दाल लेकिन के दिहल जाता, महतारी वही खाते।
0: तो हमें लगता है पेट भर गया मतलब पोषण मिल गया, लेकिन दूसरा और भी कारण देखें। अभी आज के समय में जैसे किशोरावस्था में लड़कियों में, महिलाओं में दुबला दिखने का बहुत चलन है कि हम स्लिम दिखते हैं तो सही है, लेकिन हमें ये सोचना है कि कहीं हम स्लिम दिखने के लिए अंडरवेट तो नहीं हो

0: हैं
1: जी
0: या हमारा खान पान गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये कारण है और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, आहार के अलावा भी अगर हम बात करें, बहुत बार लगता है कि हम भोजन भी अच्छा ले रहे हैं लेकिन तब भी हमारा कहीं ना कहीं पोषण स्तर खराब है।
1: एक फोन
0: हेलो
1: आवा था।
2: हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ भैया, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोला थे नगरिया कार्यक्रम में? आपका बहुत बहुत स्वागत हो।
3: हाँ नमस्कार, हम
1: नमस्कार।
3: राजू की सुपरमा रामेश्वर से, राजू
1: रामेश्वर से कौन भैया?
3: की सुपरमा रामेश्वर
2: राजू विश्वकर्मा।
1: अच्छा,
2: हाँ भैया, अपन प्रश्न करिए, आप क्या पूछना चाहते हो?
3: हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कुपोषण का मतलब क्या होला, कितना मात्रा में खाना खाए के चाहिए।
2: अच्छा, तो आप बताएं कि भैया का सवाल क्या जवाब?
0: ये राजू विश्वकर्मा जी, आपका प्रश्न है कि कुपोषण क्या है,
2: और कितना खाया जाए?
0: तो आपको कितना खाना, तो ये कुपोषण, तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे आहार में जो असंतुलन है, चाहे हम अल्प भार हो, बहुत कम वजन होना, बहुत अधिक वजन होना, या किसी भी पोषक तत्व की कमी होना, सभी को हम कुपोषण कहते हैं। सामान्य तौर पर हम यही समझते हैं कि जो दुबला है वही कुपोषित है, ऐसा नहीं है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि कितना भोजन लिया जाए, तो ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, क्या वो बहुत क्रियाशील व्यक्ति है, कम क्रियाशील व्यक्ति है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य तौर पर कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा आहार अच्छा हो सकता है। जैसे कि हम कितना खाएं, जो आप पूछ रहे हैं, तो इसको हम ना अपने हाथ के आकार से समझ सकते हैं। जैसे अगर दो अंजुलियों के बराबर हम अपने खाने में रेशा लेते हैं,
1: हाँ
0: या एक हथेली के बराबर हम अगर दाल लेते हैं या फलियां लेते हैं, और अंगूठे के आकार के उतने मात्रा में अगर हम स्वस्थ वसा लेते हैं, तो ये हमारा सही भोजन है।
2: हाँ, तो
1: एक
2: लाली
1: और
2: लोग।
1: फोन आवा था, श्रोता भैया से जुड़ल जाए।
2: हाँ, हेलो
1: हेलो
2: हेलो हेलो
1: फोन कट गए, संपर्क नहीं हो पावल। और
2: हेलो
1: राजू विश्वकर्मा भैया का तो भाई समस्या का हल हो गई
2: हाँ
1: होई।
2: हाँ
1: हाँ
0: आशा
1: अभी
0: है कि वो संतुष्ट हुए होंगे जवाब से। और अपने भोजन में आप जितना विविधता रखिए, जितना रंग रखिए अपनी थाली में, जितना रंगीन
1: फोन
0: खाद्य
1: आवा थी
0: पदार्थ हो।
1: मैडम, फोन आवा थी ले
2: हेलो,
1: लीजिए।
3: हाँ हेलो,
2: हाँ भैया, कहाँ से आप बोले थे ना, अपन नाम बताएं।
3: हम सैतपुर या सरैया से मोहन यादव बोल रहे हैं।
2: आजमगढ़ सरैया से बोले थे ना, आपका नाम क्या भैया?
3: मोहन यादव,
1: मोहन
3: सैतपुर
1: यादव
3: सरैया।
1: भैया, बहुत बहुत स्वागत है अंगनैया में। आज कुपोषण पर बात होता है
2: हाँ, अपन
1: तो।
2: प्रश्न पूछिए आप।
3: सर नमस्कार,
0: नमस्कार।
3: कुपोषण का होला, इसके लक्षण का बताओ के बारे में कुछ समझाना चाहती।
2: आप इनका लक्षण
0: कुपोषण
2: बताओ।
0: मतलब चाहे दुबलापन, चाहे मोटापन, चाहे आपके जो कमी है, जो आपके शरीर में खून की कमी है, विटामिन की कमी है, ये सब कुपोषण में आता है।
2: उनके लक्षण भी बता दें कि
0: और
2: क्या।
0: लक्षण में जैसे कमजोरी होना, चक्कर आना, अगर वयस्कों में बात करें, और बच्चों में जैसे शारीरिक वृद्धि सही नहीं होना, वजन कम होना, उनकी लंबाई उनकी उम्र के अनुसार नहीं होना, और समय के साथ जो बच्चों का जैसे विकास होना चाहिए वैसे अगर नहीं हो रहा है, तो यह भी कुपोषण को दर्शाता है।
3: बच्चा मतलब 3 से 4 फुट लंबाई है, तो उसका वजन कितना होना चाहिए, उसको भोजन कितना दिया जाए।
0: नहीं तो ये आप बच्चे की उम्र कितनी है, और समय समय पर अगर आपके पास आंगनवाड़ी है आपके घर के पास, आप सुविधा लीजिए, बच्चे की निगरानी कराइए, वृद्धि की निगरानी समय समय पर उसका चेक कराइए कि उसके एज के साथ, उम्र के साथ उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको भूख प्रॉपर नॉर्मल लगती है कि नहीं, समय पर वो खाना मांगता है कि नहीं।
3: कमी है 14 महीने की, उसका वजन बहुत कम है, लंबाई तो मतलब ठीक है।
0: नहीं तो उसको आप वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे सहायता लीजिए, अगर वो बताती हैं तो आप डॉक्टर से लीजिए और उसका उस दिशा में आप जाइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए।
2: तो मोहन भैया आपकी दुकान
0: कभी सिर्फ आहार से नहीं, कभी कभी

0: हो सकता है उसको कोई शारीरिक और समस्या हो, तो उसका पहले आप निदान कराइए और उसके साथ फिर आहार अच्छा दीजिए, तो बच्चे के ग्रोथ, वजन सब अच्छा होगा।
1: तो कहीं लाली कि भाई अभी हम लोग बातचीत करते रही ना कि भाई अपने खान पान में ऐसा का देवल जाए जैसे कि अगर बच्चा कुपोषित हो या महिला कुपोषित है तो भाई वो कुपोषण से उपचल रह जा सके।
2: माने कि कुपोषण का शिकार हो
1: नो
2: भी गए है तो
1: हाँ
2: कौने खान पीन से वो सही हो सके।
0: हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कुपोषण से ग्रसित है भी तो उसको क्या दिया जाए या क्या किया जाए उसके लिए। तो हम देखते हैं बच्चों में कुपोषण जो है उसका अलग अलग स्तर होता है। तो अगर बहुत सीवियर वाला है, बहुत ज़्यादा वाला कुपोषण है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पर आपको चिकित्सकीय सहायता लेनी होगी। जी। और अगर कुपोषण का भी शुरुआत है, कम स्तर पर है, तो उस समय उसको घर के भोजन से, संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन से उसको ठीक किया जा सकता है। तो अब हमें होगा कि माताओं को ये प्रश्न होगा कि उनको हम क्या क्या दे सकते हैं।
1: जी
0: तो बच्चों को उम्र के अनुसार आप देखिए, पहले तो जो न, जो न,
2: एक तो फोन आवा था मैडम, ले
0: जन्म
2: लिया जाए, फिर एक जवाब
1: हेलो
2: सुनो।
1: हेलो हेलो हेलो,
2: नीचे
1: संपर्क
2: मोबाइल
1: ना हो
2: कट
1: पाते
2: जाते
1: लाली।
2: हैं।
1: हाँ हेलो
2: संपर्क ना हो पाए, फोन कट गए। हाँ मैडम बताइए, आप जो बतावत रही ना।
0: सबसे पहले तो हम देखें कि बच्चा किस उम्र में है। अगर नवजात शिशु है तो उसको सबसे पहले माता का दूध मिलना चाहिए
1: जी
0: जन्म के 1 घंटे के अंदर, और जो गाढ़ा दूध आता है वो जरूर दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसको दूध को हटा दिया जाता है, वो नहीं देते हैं।
1: हाँ जैसे बच्चा पैदा हो
2: एक
1: जो
2: फोन
1: पहला
2: आवा
1: दूध।
2: था
1: हाँ
2: भाई।
1: हाँ हाँ हेलो हेलो
2: हाँ
1: हेलो
2: भैया बताएं, कौन का नाम है आपका,
3: जी, हमारा
2: नाम बताइए। अपन
3: नाम विनोद कुमार।
2: विनोद कुमार भैया कहाँ से बोला तुम?
3: हम जमतिहवा दाढ़ीराम से।
1: अच्छा भैया, अपन
2: अच्छा
1: प्रश्न पूछिए आप।
3: जी, हमारे थोड़ा सीना में दर्द रहेला, तो मतलब 2-3 महीना से, तो एकर दोनों इलाज।
2: देखिए आज तक कुपोषण पर बात होता है ना, आज जो हम
3: जी
2: लोगन के बीच में आहार विशेषज्ञ गरिमा उपाध्याय जी आए हैं, ये कुपोषण के बारे में जानकारी देथिन, तो ऐसे जुड़ल अगर आपका प्रश्न हो तो आप उत्तर पा सकेली।
3: जी हाँ, ओकरे बारे में बताएं, कुपोषण के बारे में, मतलब कौन सी चीज खाई जाए कि मतलब शरीर में लगे और
1: माने
3: फायदा
1: आपकी कमजोरी महसूस होते हो भैया?
3: हो। जी, हाँ कमजोरी।
0: आप जैसा बता रहे हैं, आपको सीने में दर्द हो रहा है, तो आपको पहले अपनी जांच करानी होगी, है ना? जांच कराने से समझ में आएगा कि आपको कहीं कमी है या आपके सीने में दर्द है, तो आपको हृदय संबंधी समस्या या कोई भी समस्या हो उसको पहले आप जांच कराएं। और जहाँ तक आहार की बात है, तो आप अपने थाली को बहुत विविधता से भर कर भरिए, जिसमें कि हरी सब्जियां भी हो, दाल भी हो, अनाज भी हो। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि जितने भी मौसमी सब्जियां, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि महंगी चीज खाएंगे तो बहुत ज्यादा पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र में जो भी स्थानीय मौसमी और आपके परिवार का जो पारंपरिक कुछ आहार है वो भी बहुत स्वस्थ होते हैं,
1: जी
0: तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं।
2: धन्यवाद भैया फोन करे बदे। हाँ आहार का बात करत रही है, कुपोषण का
1: जोन
2: की।
1: बच्चन में बात होत रहल है कि भाई अगर बच्चा नवजात हो तो माँ के जो हो अपन प्रथम दूध जरूर पिलावे। हाँ
0: और जैसे जैसे बच्चे का जो होता है कि जैसे माँ का गर्भाधान होगा उससे लेकर 2 वर्ष तक,
1: जी
0: उसको कहा जाता है बच्चों का 1000 स्वर्णिम काल।
2: अच्छा
0: आजकल जो सरकार की योजनाएं हैं
1: हाँ
0: उसमें भी फर्स्ट 1000 डेज या पहला 1000 दिन,
1: जी
0: उसके महत्व को बताया जा रहा है। तो अगर वहाँ पर बच्चों का सही पोषण मिले वहीं से, तो उनका आगे चलकर अच्छा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उनके जो सीखने की क्षमता होगी बहुत अच्छी होगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी।
1: जी
0: तो इसके

0: हमें जब बच्चों को 6 महीने से जब माता के दूध के साथ जब पूरक आहार देना देते हैं तब उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उस
1: अच्छा, गर्भावस्था में जैसे जब बच्चा रहेला तो कब्बो कब्बो पता तो ना ही चलेला और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएला, तो कैसे पहचानल जाए कि गर्भवती महिला के जो गर्भ में बच्चा है वो कुपोषित नहीं है?
0: इसके लिए जो गर्भवती महिला है उसको अपना समय समय पर जैसे उनको पता चलता है कि वो गर्भधारण कर चुकी हैं उसके बाद उनको एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और जो समय समय पर जांच है सारा जांच को कराना चाहिए और जैसे समय पे उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देना दिया भी जाता है तो उसको वो नियमित रूप से लें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप आयरन लेती हैं या आयरन की गोली लेती हैं या जो भी दी जाती है विटामिन की गोली तो जो चिकित्सक जो समय बताएं उस निर्धारित समय पर ज़रूर लें और जिस खाद्य पदार्थ के साथ लेने को कहा जाए उसको भी ध्यान दिया जाए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं उनको लगता है भूल गई तो अभी एक गोली खा लिया, रात को याद आया रात को खा लिया, सुबह खा लिया, ऐसा नहीं करिए। जो समय बताया जाए उस निर्धारित समय पर खाइए और जिस खाद्य पदार्थ के अगर साथ कहा जाए तो उसके साथ खाइए। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक चीज और है जो हम लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला है तो उसको बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए कि उसके बच्चे की अच्छी वृद्धि हो विकास हो तो उसको ज्यादा खाना है। तो ज्यादा मतलब ये क्या होता है फिर वो संतुलित नहीं होता है, मात्रा
1: जी
0: तो बढ़ जाती है लेकिन
1: जी
0: उसके गुण में परिवर्तन
1: तो
0: नहीं
1: नहीं।
0: करते हैं। तो ये भी देखने की जरूरत है कि जो आहार हो उसमें सभी भोज्य समूह रहें, सभी रंग के खाद्य पदार्थ हो, दूध हो, विटामिन से भरपूर फल सब्जी सब कुछ हो।
1: अच्छा, बहुत बहनी लोगन के देखीला कि अगर कहल जाए कि भाई गर्भधारण कर ले हिन तो उनके ढेर का खाए के है तो हर 1 घंटा पे खात रह लिन, तो इस सही प्रक्रिया है कि गलत है?
0: नहीं, अभी जैसा मैंने कहा कि मात्रा को ही बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो भोजन है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाना है।
2: माने लाली जी जोन हो बहन जी कहल चाहते हैं कि भाई जोन उनमें खान पान के जोन हो जैसे सब्जी हो सलाद हो दाल हो अंकुरित मूंग हो चना हो माने एकर बात करते हैं कि उनमें विविधता रहे कि तरह
0: विविधता रहे और थोड़े अंतराल पर एक एक घंटे पे हर समय हर समय अनाज की चीजें नहीं खाना। कभी आप फल खाइए थोड़ी देर में, कभी जूस लिया, कभी अंकुरित मूंग लिया शाम को। तो इस तरह से अपने जो जो आपका आहार है उसकी बारंबारता को बढ़ानी है और मात्रा थोड़ी थोड़ी रखनी है।
1: अच्छा, 6 महीना तक तो बच्चन महतारी के दूध पर रहेलन और ओकरे बाद से जब उनके कुछ देवल जाला कि वो अनाज भी लें और फल भी लें तो वो कैसे देवे के चाहिए, कितना मात्रा में देवे के चाहिए कि वो स्वस्थ रहें कुपोषण की ओर ही ना जाएं?
0: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 महीने तक तो बच्चे को माता के दूध पर रखा जाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार की आवश्यकता होती है। तो पूरक आहार में जैसे हम लोग करते हैं कि तरल पदार्थ देते हैं, दाल का पानी, चावल का माड़ देने लगते हैं, तो इतना भी तरल पदार्थ देने से क्या होता है कि उसको पूरी पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो हमें धीरे धीरे जैसे पहले बहुत तरल दिया फिर धीरे धीरे उसको उसको उसका
2: खुश खुश
0: गाढ़ापन
2: हाँ
0: बढ़ाते जाने और 1 साल के ऊपर होते हुए बच्चे को ठोस जो घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन होता है उसमें हम बच्चों को लाना चाहिए कि वो जो घर में जो भोजन बन रहा है उसको वो लें।
1: अच्छा, अब फल
0: और
1: हर तरह का देवे के चाहिए?
0: फल और जूस दे सकते हैं और जैसे 6 से 8 महीने पे बहुत तरल पदार्थ दे रहे हैं फिर 8 से 10 महीने 9 से 11 महीने में धीरे, मेरा कहने का मतलब है कि धीरे
2: जी
0: धीरे
2: जी
0: वो तरल से उसको आप धीरे धीरे अर्ध से ठोस की तरफ बढ़ते जाएं। 1 साल तक जैसे पहले आप दाल का पानी दे रहे हैं तो फिर 8 महीने पर उसको दाल दें, मैश खूब उसको घुटा
2: मिला
0: हुआ
2: करके
0: दाल कर
2: हाँ
0: दें, घुटी हुई दाल दे दें, मसला हुआ केला दें। 9 महीने 10 महीने का बच्चा है
2: आलू भी
0: तो
2: देखोल जा सके
0: आलू दे सकते हैं, दाल को भी खूब अच्छे से खिचड़ी
2: के
0: के रूप
2: हाँ
0: में उसमें सब्जी डालकर और अच्छे से मसल कर दे सकते हैं। तो इससे उसको पोषक तत्व मिलते जाएंगे।
1: अच्छा, कुछ समय पहले जैसे बात करत रलीना खाए पिए का तो मन रंग का बात आप करत रलीना कि ओकर बहुत महत्व हो।

0: ओके तनी फरिया के बता दें।
1: रंग रंगीन चीज किसको नहीं अच्छी लगती है।
2: जी
1: हम सब सारी दुनिया में हर तरफ हमें लगता है कि सब चीज सफेद ही ना हो, सब चीज काली ना हो, हमें रंगीन चीज अच्छी लगती है।
2: जी
1: तो उसी तरह से जब हमारे पास खाने की थाली आती है तो थाली रंगीन होगी तो हमारा भूख बढ़ जाएगा, खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो रंगीन थाली का मतलब ये है कि हम उसको बहुत सामान्य भाषा में या शब्दों में देख सकते हैं कि हमारा भोजन संतुलित है कि नहीं है, क्योंकि हम हमेशा नहीं जानते हैं कि किस में कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है। लेकिन अगर हमारी थाली रंगीन है, जैसे अनाज है,
2: जी
1: अनाज सफेद हो गया, दाल में आपका पीला रंग आ गया, फल सब्जियां हो गई तो रंग आ गया, उसमें हरा भी हो गया, पीला भी हो गया, नारंगी रंग भी हो गया, तो दही है, दूध है, तो वो सफेद रंग है। तो आप देखिए कि आपकी थाली में जितना ज्यादा रंग है इसका मतलब आपका भोजन उतना संतुलित है, उतना पौष्टिक है।
0: एक प्रश्न और चलत चलत आपसे पूछ लें कि ये जो उनको पोषण का समस्या है, ऐसे कौन कौन तरह का बीमारी बहनी लोगन के चाहे लड़कन में हो सकेला?
1: कुपोषण जैसा पहले भी बता दिया कि कुपोषण में एक तरफ तो बहुत वजन कम की भी समस्या हो सकती है, दूसरे सब तरफ देखें तो मोटापा भी है।
2: जी
1: और ये जो है, अगर वजन कम है तो वहाँ से क्या होगा कि जितने भी जो बच्चा जब कुपोषित होता है तो उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा कमजोर हो जाता है।
2: जी
1: तो उसमें कहीं से भी उसको संक्रमण बहुत आसानी से हो जाएगा, तो उसके तरह तरह की समय समय पर उसको बीमारी होती रहेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुपोषण और संक्रमण एक चक्र है जो चलता रहेगा। उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें कि मोटापा है, मोटापा बहुत होने से क्या होगा कि आजकल के जितने हमारे जीवन शैली के रोग हैं, जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, बीपी की समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो ये सारे बीमारियों की जड़ जो है वो मोटापा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कुपोषण का कोई भी पार्ट तरफ हो, चाहे वो कम वजन हो चाहे वो बहुत अधिक वजन हो, दोनों ही बीमारियों का स्रोत है।
0: बहुत अच्छी आप जानकारी दे लेन और श्रोता भैया बहनी लोगन के प्रश्न का उत्तर भी दे लेन। और अब चले का भी बेरा हो गया है, तो चलत चलत बहनी लोगन बदे कुछ संदेश?
1: हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सुपोषित माता होगी तभी समृद्ध देश होगा, सुपोषित बच्चे होंगे तभी सबल देश होगा। और मेरा एक संदेश है कि हमें बहुत, जैसे वैज्ञानिक तरीके से भोजन को हम सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम अगर अपने जो पाकशाला है, जो हमारी रसोई है, उसको अगर हम थोड़ा सा पोषण शाला बना दें तो सभी लोग स्वस्थ होंगे और सबको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है।
0: बहुत बढ़िया बात आप कहली ना। और हमारे कार्यक्रम में लीन गरिमा उपाध्याय जी, इकरे बदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इमृति बहन कही ना कि अब घड़ी भी कहा था कि चले का बेरा हो था,
2: देखा
0: चलत चलत बता दिहल जाए कि एक कार्यक्रम का प्रस्तुत करता रहना है दिलीप यादव। अब बहनी लोगन से फिर भेंट करे आइब जा, तब तक के
2: नमस्ते।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज की कलाकार हैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में पहले प्रस्तुत है ये झूमर।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज की कलाकार हैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। झूमर के बाद कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये बिरह गीत।

कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा

0: दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने

0: विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
2: रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र

0: के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा। प्रस्तुति शुचि उपाध्याय की।
2: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। ये शबनमी लहजा है, आहिस्ता गजल पढ़ना, तितली की कहानी है, फूलों की जुबानी है।

ना हो हाथों में हाथ फिर भी एक आस रहने दो, ना हो हाथों में हाथ फिर भी एक आस रहने दो, जरूर मिलेंगे कभी दिल में ये एहसास रहने दो।

खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है।

इसी गजल के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा अब यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और गजलों और गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: एक
1: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा। प्रस्तुति शुचि उपाध्याय की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

यह आकाशवाणी वाराणसी है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन IR ऐप और वेव्स OTT पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। आरंभिक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य।

नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी नहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। यह एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था

बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम, पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की, और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी हुआ। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौती।

क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था, पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ? विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ जानेंगे आगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रहना मिशन्स में जाना।

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटर्न टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर को

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल

बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल दो अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया, विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है धरती के गीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सिंधी गीत। कलाकार हैं कमला केशवानी।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं धरती के गीत, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिंधी गीत।

डिग्गी चाहती है हा? डिग्गी यहाँ तो जोड़ी तो मिला दी ना डिग्गी साधा देंगी देंगी मना बिल्कुल मिलती उन्हें मानता था फायदा था।

जोड़ी तो मिला है ना भाई, सारी सही थी, सारी अगर सुनिए कुछ मान दो। खास चौधा ना छोकरा भी असांखे चवणी खपे, चवणी खपे, इहो मिठो माॻ वठी आहे ख़ासि हिदायत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपने सिंधी गीत सुने और कलाकार इस कार्यक्रम के लिए थीं कमला केशवानी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने, युववाणी।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंचती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जिनका इंतजार हर हफ्ते रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम। मैं हूं दिव्या।
1: और मैं हूँ आलिया। दिव्या, कहते हैं ना कि दोस्ती तभी मज़ेदार होती है जब बातों में थोड़ा तर्क हो, थोड़ा मजाक हो और ढेर सारी मुस्कान हो।
0: बिल्कुल सही। और आज तो हम दोनों भी कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं। जानकारी भी होगी, दिलचस्प बातें भी होगी, कुछ यादें भी ताजा होंगी, और आपके लिए होगा मनोरंजन का पूरा खजाना।
1: बिल्कुल, तो चलो, मनोरंजन की बात तुमने कर ही दी है तो एक गीत सुन लिया जाए।

0: दिव्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसी कौन सी आवाज है जो बिना किसी चेहरे के भी करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा?
1: मेरा जवाब तो होगा रेडियो, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को खबरों से जोड़ा, संगीत से जोड़ा और भावनाओं से जोड़ा।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक शुरुआत की याद दिलाता है जब भारत में रेडियो प्रसारण की नींव रखी गई। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी वैसी ही है।
1: सच कहा तुमने, पहले लोग शाम होते ही रेडियो के पास बैठ जाते थे, समाचार सुनना हो चाहे क्रिकेट की कमेंट्री हो, नाटक हो या गीत, हर कार्यक्रम का अपना अलग इंतजार होता था।
0: बिल्कुल, और आज भी डिजिटल युग में रेडियो अपनी पहचान बनाए हुए है। FM हो, ऑनलाइन रेडियो हो या फिर आकाशवाणी, हर मंच पर रेडियो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है।
1: रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ सिर्फ आवाज होती है, लेकिन वही आवाज श्रोताओं के मन में पूरी तस्वीर बना देती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो केवल सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है।
0: हम जैसे युवाओं के लिए भी रेडियो एक ऐसा मंच है जहाँ अपनी बात कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज से जुड़ने का अवसर मिलता है। युवाणी जैसे कार्यक्रम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
1: और जब कोई किसान खेत में काम करते हुए रेडियो सुनता है, कोई ड्राइवर सफर में साथी बनाता है, कोई विद्यार्थी प्रेरणा लेता है या कोई बुजुर्ग पुराने गीतों में अपनी यादें ढूंढता है, तब समझ में आता है कि रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है।
0: दोस्तों, आज का समय AI का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन रेडियो की सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, विश्वसनीयता, अपनापन और संवेदनशीलता।
1: तो आइए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम उन सभी अनाउंसर्स, लेखकों, कलाकारों और पर्दों के पीछे काम करने वाले हर उस व्यक्ति का सम्मान करें जिनकी मेहनत से हर दिन लाखों श्रोताओं तक आवाज पहुंचती है।
0: क्योंकि आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, वह विश्वास भी होती है, और यही विश्वास वर्षों से रेडियो अपने श्रोताओं तक पहुंचाता आ रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे और भी बातें करेंगे, पर उससे पहले सुनिए ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
8: 0542227658।
6: ओ, शून्य

0: 5-4-2-2-2-7-6-5-8
1: लो अभी फोन लगाता हूँ
0: 0-5-4-2-2-2-7-6-5-8
2: आलिया, आज का दिन हमें भारत के एक ऐसे वीर सपूत की भी याद दिलाता है जिनकी बहादुरी और देशभक्ति की मिसाल आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है।
3: जी हाँ दोस्तों, आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। उनका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना स्वतः सामने आ जाती है।
2: 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद ने बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी और यह प्रण भी लिया कि वे जीवन भर आजाद रहेंगे।
3: उनका प्रसिद्ध वाक्य, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आज भी युवाओं में देश प्रेम और साहस का संचार करता है।
2: और जब स्वतंत्रता संग्राम की बात हो तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम लिए बिना वह कहानी अधूरी रह जाती है।
3: बिल्कुल दोस्तों, आज उनकी भी जयंती है। तिलक जी केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, शिक्षक, पत्रकार और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक भी थे।
2: उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रेरणादायक उद्घोष बना। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से देशवासियों में आजादी की अलग जगाई।
3: दोस्तों आज के दिन हम इन दो महान व्यक्तियों को नमन करते हैं और अब सुनते हैं ये गीत।

0: दिव्या, कहते हैं कि म्यूजिक यानी संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा गाना कभी मुस्कुराने की वजह बन जाता है तो कभी पुरानी यादों का साथी।
1: बिल्कुल आलिया, हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है। किसी को पुराने गानों की सादगी भाती है तो किसी को नए दौर का संगीत, लेकिन अच्छी धुन और अच्छे बोल हर दिल को छू ही लेते हैं।
0: और जब कोई गाना हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है तो वह सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता बल्कि हमारी यादों का हिस्सा बन जाता है।
1: यही वजह है कि युववाणी में हम लेकर आते हैं मेरी पसंद, जहां हम सुनते हैं ऐसा गीत जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून दे।
0: तो आइए अब शब्दों को थोड़ा विराम देते हैं और सुरों का साथ लेते हैं।
1: पेश है आज की मेरी पसंद। उम्मीद है यह गीत आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना हमें।

0: दोस्तों, शब्द मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इन्हीं के द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि शब्द ना हो तो मनुष्य अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए शब्दों को भाषा की आत्मा कहा जाता है।
1: दैनिक जीवन में परिवार, विद्यालय, समाज और कार्यस्थल पर संवाद स्थापित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा शब्दों के माध्यम से देते हैं, लेखक अपनी रचनाएं शब्दों से लिखते हैं और समाचार, पुस्तकें तथा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी भी शब्दों के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल, शब्द केवल संवाद का साधन नहीं है दोस्तों, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व और संस्कारों का भी परिचय देते हैं। मधुर और विनम्र शब्द लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान बढ़ाते हैं, जबकि कठोर और अपमानजनक शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझ कर शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
1: शब्द ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण पुस्तकों और लेखों के माध्यम से होता है, जिनका आधार शब्द ही है। आज के डिजिटल युग में भी ईमेल, संदेश, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा शब्दों पर ही आधारित है।
0: बिल्कुल, तो दिव्या, ऐसा कहा जा सकता है ना कि शब्द मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। इनके बिना न तो प्रभावी संचार संभव है और न ही ज्ञान एवं संस्कृति का विकास। इसीलिए हमें शब्दों का सदैव सही, मर्यादित और सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। और दिव्या, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कोई नया शब्द सुनते हैं और सोचते हैं, अरे इसका मतलब क्या होगा? लेकिन जब उसका अर्थ समझ में आता है तो लगता है कि ये शब्द तो हम रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आलिया, और इसी वजह से हम लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए यू डायरी, जहाँ हर दिन हम सीखते हैं और दो नए शब्द और काम के शब्द, एक हिंदी और एक अंग्रेजी का।
0: बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आज के शब्द। तो आज का हिंदी शब्द है दोस्तों, अधिस्वीकृति। सुनने में थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन इसका मतलब तो बहुत आसान है। अधिस्वीकृति यानी किसी काम या योजना को आधिकारिक मंजूरी मिल जाना। मतलब जब किसी अधिकारी या संस्था की ओर से कहा जाए कि हाँ, अब यह काम शुरू किया जा सकता है, तो उसे अधिस्वीकृति कहते हैं। और इसका हम वाक्य प्रयोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कॉलेज में नए कंप्यूटर लैब की अधिस्वीकृति मिल गई है, इसीलिए अगले महीने से उसका निर्माण शुरू होगा। या फिर सरकार ने नई योजना को अधिस्वीकृति दे दी है, जिससे अब उसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इंग्लिश वर्ड की, जो कि है परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों को भी जल्दी समझ जाए और गहराई से सोच सके, यानी जिसकी नज़र सिर्फ सामने दिख रही चीज़ों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी बातों पर भी होती है। अगर हम लोग इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हो सकता है कि आवर क्लास टीचर इज़ वेरी परसेप्टिव। शी अंडरस्टैंड्स इफ इज अ स्टूडेंट इज अपसेट इवन विदाउट सेइंग एनीथिंग। और अगर हम लोग दूसरे वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो अ परसेप्टिव डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड अ पेशेंट्स प्रॉब्लम बाय केयरफुली लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग।
0: दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो अधिस्वीकृति वही दे सकता है जो परसेप्टिव हो, यानी जो हर बात को अच्छे से समझे और फिर फैसला ले।
1: क्योंकि बिना पूरी बात समझ लिया गया फैसला कई बार हमारे लिए गलत भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, और दिव्या क्या कहती हो, अब थोड़ा गाना सुन लिया जाए?
1: हाँ बिल्कुल आलिया।

0: आया, उनकी कहानियां आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 23 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज है।
1: दोस्तों, विश्व इतिहास की बात करें तो 23 जुलाई 1888 को प्रसिद्ध हास्य कलाकार रेमंड चैंडलर का जन्म हुआ था, जिन्हें जासूसी साहित्य के प्रमुख लेखकों में भी गिना जाता है।
0: वर्ष 2005 में नासा ने कैप्लर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा कैप्लर 452b की घोषणा की। 1995 में हेलबॉप धूमकेतु की खोज हुई। 1999 में स्पेस शटल कोलंबिया ने ATS-93 पर उड़ान भरी, जिसमें एलिन कॉलिंस पहली महिला स्पेस शटल कमांडर बनी।
1: और दोस्तों, 23 जुलाई वर्ष 1999 को करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर के महत्वपूर्ण इलाकों पर विजय प्राप्त की। यह ऑपरेशन विजय की सफलता की दिशा में एक अहम कदम था और हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था।
0: इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि साहस, नेतृत्व और सही विचार समय बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, इतनी बातों और गानों के बीच अब आ गई है बारी आज के सवाल की, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब और उनके विनर्स के बारे में है। कल का हमारा आपसे सवाल था कि जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला बना भारत का पहला राज्य कौन है, जिसका सही उत्तर है असम।
1: और दोस्तों, सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्यामा बाई रायकवाड़। आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और अब सुनिए हमारा आज का सवाल।
0: और हमारा आज का आपसे यह सवाल है कि विच यूरोपियन यूनियन मेंबर रिसेंटली अप्रूव्ड अ लॉ बैनिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 15।
1: हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: विच यूरोपियन यूनियन मेंबर रिसेंटली अप्रूव्ड अ लॉ बैनिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 15।
1: दोस्तों, आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर या फिर हमारी इंस्टा आईडी youthairvaranasi पर। और अब जवाब देते देते सुनिए ये गीत।

0: दिव्या, कहते हैं ना कि अगर हमें भविष्य को बेहतर बनाना है तो अतीत से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि अनुभवों और प्रेरणाओं की एक अनमोल धरोहर है।
1: वालिया, इतिहास हमें बताता है कि जिन लोगों ने अपने साहस, विचार और कर्म से समाज में बदलाव

0: दिव्या, आज का युवा सिर्फ सपने ही नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन नए अवसर भी तलाशता है।
1: बिल्कुल आलिया, लेकिन सही समय पर सही जानकारी मिलना भी उतना ही जरूरी है। कई बार एक छोटी सी सूचना किसी के करियर की दिशा बदल सकती है।
0: बिल्कुल, इसी सोच के साथ युवाणी में हम लेकर आते हैं रोजगार सूचना, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं और नए अवसरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। और दोस्तों, आज की भी हमारी रोजगार सूचना कुछ इसी प्रकार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPSC की PCS परीक्षा 2026, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रियाएं चल रही हैं और कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी।
1: इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई 2026 है, इसीलिए जल्दी से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अंतिम तारीख से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.up.nic.in जाकर आवेदन करें।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, अब वक्त है अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु तो 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नई उड़ान योजना के विषय में बात करने का।
1: दोस्तों, नई उड़ान योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली केंद्र सरकार की एक पहल है, जो यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अल्पसंख्यकों को उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
0: पात्र उम्मीदवारों को UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख तक और स्टेट PCS या SSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
1: आवेदकों को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए और अधिक जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर मिलेगी।
0: और दोस्तों, कार्यक्रम में अभी और भी कुछ बातें करनी है, पर उससे पहले लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: दिव्या, आज के पूरे कार्यक्रम में हमने इतिहास की बातें की, नए शब्द सीखे, संगीत का आनंद लिया और रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की। लेकिन इन सभी के बीच एक बात जो है बार बार मुझे महसूस हुई है।
1: और वह है टीम वर्क, क्योंकि चाहे कोई रेडियो कार्यक्रम हो, कोई खेल का मैदान हो, कोई ऑफिस हो या फिर जिंदगी का सफर, अकेले आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन बड़ी मंजिलें हमेशा मिलकर ही हासिल की जाती है।
0: बिल्कुल, जरा सोचिए, जो कार्यक्रम आप अभी सुन रहे हैं उसके पीछे सिर्फ दो लोग नहीं है, बल्कि टेक्निकल टीम है, साउंड इंजीनियर है, प्रोड्यूसर है, अनाउंसर है और कई लोगों की मेहनत शामिल है इसमें। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, तभी हम एक अच्छा कार्यक्रम आप तक पहुंचा पाते हैं।
1: यही तो टीम वर्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी सफलता मिलती है।
0: कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट हो, खेल प्रतियोगिता हो या भविष्य में कार्यस्थल, सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी टीम की सफलता के बारे में सोचना चाहिए। यही एक अच्छे साथी की पहचान है। और दोस्तों, अब इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं आलिया,
1: और मैं हूं दिव्या।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कैले हमें कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में शामिल लोगिन के जुड़ते आ कड़ेर सजा दियावे बदे फास्ट ट्रैक अदालत बनाई। वहां के छात्र लोगिन के भविष्य के रक्षा के सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता बतौनी।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
0: ए बिचे संसद के दोनों सदनन का कार्यवाही अजुओ नीट पेपर लीक मामला के साथ ही कई गो मुद्दन पर विपक्ष के हंगामा के नाते लगातार बाधित भइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतवार के आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश आ विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करी हैं। यह कार्यक्रम को 136वीं कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम बदे अपन विचार आ सुझाव भेज सके ने। मन की बात कार्यक्रम बदे सुझाव बिहने ले मंजूर कैल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से पैडले गंज ले तक 6 लेन फ्लाईओवर के साथ 995 करोड़ रुपया से बेसी लागत के 14 परियोजनन के लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। ए मौका पर श्री योगी कहने कि नया उत्तर प्रदेश में रोड का कनेक्टिविटी ढेर बढ़िया भइल बा।
2: विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज यहाँ से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री आज भी नहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों का समस्या सुनने आ संबंधित अधिकारियों के ए समस्यान का जल्दी निस्तारण बदे निर्देश देने। अयोध्या के मणिराम दास छावनी के धर्म मंडपम में आज साधु संतन का एगो खास बैठकी भई।
3: रामनगरी के मणिराम दास छावनी स्थित धर्म मंडपम में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संतों की बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विभिन्न धार्मिक संगठनों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक संत महंत शामिल हुए। बैठक के मुख्य मुद्दे के रूप में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के साथ ही मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं के विश्वास

0: और भविष्य की धार्मिक कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की गई। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: मणिराम दास छावनिया में काली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टों का एगो खास बैठकी भइल। ट्रस्ट का महासचिव कृष्ण मोहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के मामला में बैठकी में लिहल गई फैसला के बारे में जानकारी देना है।
2: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। यह दिन बरिस 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू भइल है। बाद में बरिस 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के स्थापना भइल आ 1956 में एकर नाम आकाशवाणी रखल गइल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण पहले। तत्पश्चात हम आपको कल दिनांक 24 जुलाई दिन शुक्रवार के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। पहले सभा के शेष कार्यक्रम। संसद समीक्षा रात 8 बजे और रात 10 बजे परिचर्चा प्रसारण का बदलता क्षितिज। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारियां और इसका इलाज विषय पर डॉक्टर ए के प्रसाद और सुधीर कुमार श्रीवास्तव के बीच की गई बातचीत के अलावा डॉक्टर संध्या गुप्ता के गाय लोकगीत का भी आनंद ले सकते हैं। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग और रसमाधुरी कार्यक्रम में रात 8:15 पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। और अब कल दिनांक 24 जुलाई दिन शुक्रवार के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर।

श्रोताओं, संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा रात 8 बजे, ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे, गायन कलाकार होंगे उस्ताद राशिद खान, और प्रातः 7:31 पर एवं दिन में 12:45 पर शहनाई वादन आप सुनेंगे, कलाकार होंगे फतेह अली खान। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर सुना जा सकता है। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई अन्य कार्यक्रमों के अलावा महुआ बनर्जी के गायन लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार, सूचना और फिल्म संगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। एक ही कलाकार कार्यक्रम दिन में 2:30 पर प्रसारित होगा। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 एवं दिन में 1:45 पर कलाकार होंगी महुआ बनर्जी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने गीत संगीत के अलावा अन्य कार्यक्रम भी सुनेंगी। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे व्यास जी मौर्य। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12 बजे का, और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप पर आधारित आप सुनेंगे सुबह 11 बजे से। झनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे, और मधुरिमा 8:45 पर, गुड मॉर्निंग बनारस प्रातः 7 बजे, भक्त संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना प्रातः 6:10 पर, साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ,

0: प्रातः 6:25 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का प्रसारण प्रातः 6:40 पर और खेती की बातें कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 6:05 पर किया जाएगा। तो ये थे कल दिनांक 24 जुलाई दिन शुक्रवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये पहला गीत था बावर्शी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और संगीत मदन मोहन का था। और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बातों बातों में। इस फिल्म का ये गीत आइए सुने हम और आप साथ साथ।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के साथ साथियों की आवाज़ों में फिल्म बातों बातों में का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बज

0: 20 मिनट होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: पंचो राम राम राम राम हो गौरी बहन।
1: राम राम मोहन भैया, खेती किसानी का क्या हाल चाल?
0: खेती किसानी का देखा है घरी जो ने कि पूरा जो ने कि पूरा घर परिवार कुल लोग मिलकर के जुझल हुआ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके धान का देखा रोपाई हो जाए। आ देखा खेते सिवाने में जिधर देखा ना उधर खाली देखा धान का रोपाई वाला लोग लौकत हुआ। आ कोई बिया का बरत बाय था, कोई जो है कि बिया पहुँचाओ था, कोई बिया फेंकत था, आ कोई देखा लेवर लगावत है वही में। सब लोग जो है कि जुझल हुआ कि कितना जल्दी हमार काम सपर जाए।
1: जल्दी काम सपरी तब तक खेती मतलब टाइम से हुई ना।
0: हाँ देखा समय से देखा कहल न कि आगे का खेती आगे आगे आ पीछे का खेती भागे जोगे। तो जे आगे खेती कर ले वाला ना ओकर हर काम आगे आगे रहेला, आ जे देखा पीछे कर रहा ना वो भागे जोगे रहेला। तो हर काम आगे आगे देखा करे के चाहिए। आ देखा सबसे अच्छी बात एगरी का है ना गौरी बहन कि देखा दऊ भी देखा साथ दे ले हुआ।
1: इसमें बरसात भी में थोड़ा बहुत हो जाता।
0: हाँ तो जौन बरसात होता ना देखा ये एकदम अमृत की तरह हुआ किसान भाई लोगन के। आए घड़ी देखा तनी मनी छाँ भी करत बाड़े, आ छाँ में देखा रोपाई इतना बढ़िया होता था, फुहारा भी देत हुआ दही ऊपर ले कि रोपे वालन का जो ना देखा कजरी गाँव लगत थी लोग जो ना।
1: पानियों का सुविधा हो जाता बरसात होके और रोपा में भी छाँव रहता, नहीं तो अगर धूप लगा तो इतना धूप में काम न हो पाता।
0: अरे तो धूप अगर हो जाता तो समझ ला कि काम काम जो ना कि कपार पर जो ना इतना घाम लग जाता ना कि 2 दिन आदमी बीमार हो जाता आ बुखार आवा लगत समझे तू। तो ये तरह से देखा ही जो ना कि बड़ा अच्छा काम बाय कि गरीब रोपाई का काम जो ना कि अंतिम चरण में चलत बाय। लेकिन संगे संगे देखा ही हो कह हम ना कि देखा जितना हमन के जानकारी कुल मिले ले जो ना चाहे खेती किसानी का सब कर जो ना वो देखा केथुआ के माध्यम से मिला ले।
1: रेडियो के माध्यम से।
0: हाँ एकदम सही पकड़ ले लू है जो ना हम समझत थे। देखा आजे के दिन जो है ना कि 23 जुलाई 1927 के पहला जो है कि रेडियो का प्रसारण भई रहा इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी के द्वारा बम्बई से। आ तब से लेके आज तक देखा कितना जो है कि रेडियो अपने जीवन में योगदान करत बाय। अब चाहे जो है कि खेती किसानी के जानकारी के बात होख है, चाहे मौसम का जानकारी होख है, चाहे कोनो कृषि यंत्र का जानकारी होख है, दवाई के होख है, हर चीज का जानकारी देखा रेडियो के माध्यम से हमन के घर बैठे खेतवे में बैठे लिया तब वो मिल जाले।
1: हाँ, और इस समय मैं देखा कृषि जगत अपने कार्यक्रम में भी किसानी भैया लोगन के जो विज्ञानी भैया लोगन आवल करन, तरह तरह का जानकारी देवल करलन, फसल से संबंधित, योजना से संबंधित, मौसम से संबंधित जानकारी मिलत रहल।
0: हाँ इहो देखा बहुत नगद के बात कर लो कि देखा रेडियो के जोन कार्यक्रम होला ओकरे माध्यम से भी तरह तरह के लोग विज्ञानी लोग भैया अपने अपने क्षेत्र के जो बड़े लोग विशेषज्ञ उनके बुलावल जाला और उनके माध्यम से किसान भाई लोग जो तक जो ना कि अच्छी अच्छी बात खेती किसानी के पहुँचाओ जाले। और संगे संगे देखा यो होला ना कि देखा मनोरंजन का भी ज्ञान का भी बात होले।
1: मनोरंजन और ज्ञान दोनों का साथ।
0: हाँ आज देखा जो ना कि रेडियो का कितना महत्व है कि हर वर्ग के लिए देखा रेडियो का कार्यक्रम होता, चाहे युवा होख है, चाहे किसान होख है, चाहे गांव का महिला होख है, चाहे शहर का महिला होख है,
1: चाहे बाल बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सब
0: हाँ
1: के लिए, सब वर्ग के
0: चाहे
1: लिए।
0: फौजी भाई लोग होख है, सब लोगन के देखा ख्याल रख के रेडियो आज जो है कि उनके जीवन में योगदान करा था और सूचना प्रसारण का सबसे सशक्त माध्यम हुआ। तो एकरे से लिए देखा हम कहब कि देखा रेडियो के हम सब लोग के सुने के भी चाहिए और दूसरे के भी प्रेरित करे के चाहिए कि रेडियो सुने लोग। एक बात और तुमको बताई कि देखा जब अपन देश स्वतंत्र ना रहे ना तो रेडियो का बड़ा योगदान रहा जो न कि जितना स्वतंत्रता भाई लोग रहे लोग जो ना स्वतंत्रता आंदोलन में अपन लड़ाई लड़त रहे लोग उन लोग के देखा सूचना पहुंचावे के ही देखा बहुत अच्छा माध्यम रहा।
1: ओ समय तो एक रेडियो ही माध्यम रहल गांव में शहर में हर जगह कोनो भी कोने में सूचना पहुंचावे।
0: हाँ
1: रेडियो

0: बहुत अच्छा माध्यम रहा और आज तक भी इस्तेमाल होता है।
1: हाँ, तब से लेके आज तक देखा लगातार रेडियो जो ना कि आम आदमी के सेवा में बनल हुआ। तो हम कहम ना कि देखा हमन के बत कही देखा गौरी बहन आगे भी चलत रही, लेकिन हाई संदेश सुन ली जा।
0: सुनवा
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: देखा गौरी बहन?
4: हाँ मोहन भैया,
3: देखा ही सनेस तो हो गल, लेकिन आपका किसान भाई लोग के तुम सुनवाल चाहत हो?
4: किसान भाई लोगों का सुनवा बदाज कार्यक्रम है। हाँ। दुधारू पशु की प्रमुख बीमारियां और उनका इलाज डॉक्टर एके प्रसाद से बतेले हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव।
3: तो सुनवा था जनत हमू क्या किसान भाई लोग के भी।
5: डॉक्टर एके प्रसाद, आप सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक हों पशुपालन विभाग के। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जन हमारे दुधारू पशु हुआ, जौने के कहल जाए कि अतिरिक्त आय का साधन हमन का हाथ गोड़ भी हुआ, तो एमन जौन हो कुछ समस्या कभी कभी देखा में आवल है कि अपन पशु प्रभावित हो जाना और उसे उनका दूध भी प्रभावित हो जाला, तो कौन कौन प्रमुख रूप से समस्या ये मौसम में आ सकेले जैसे कि उनका जौन हो उत्पादन प्रभावित होला, तो आप जानकारी दें हमारे किसान भैया लोगन के।
6: किसान भाइयों सभी को नमस्कार। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतम आबादी गाँव में रहती है और गांव में ग्रामवासियों का प्रमुख रोजगार कृषि और पशुपालन ही है।
5: जी जी।
6: क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कृषि में अब बढ़ोतरी किया जाना संभव नहीं है, ऐसी दशा में हमारा पशुपालन ही ग्रामीण रोजगार का एक मुख्य जरिया इस समय वर्तमान में ठीक मुफीद मालूम होता है। और भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस पशुपालन की व्यापार पर, इसके व्यवसाय पर काफी जोर दिया जाता है। पशुपालन का व्यवसाय यदि पशुपालक भाई आप लोग करते हैं तो इस समय ये बरसात का शुरुआती मौसम है, तो इस समय मुख्य बीमारी में जो होने वाली है वो गलाघोटू बीमारी, आपने सुना होगा।
5: जी जी।
6: गलाघोटू बीमारी इस समय के पशुओं को पकड़ती है क्योंकि अचानक बारिश होने लगती है, इसके पहले काफी गर्मी थी।
5: हाँ।
6: तो गर्मी और बारिश के इस संयोग के होने के कारण मौसम का परिवर्तन है और मौसम के परिवर्तन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है।
5: अच्छा।
6: जो पशु स्वस्थ रहते हैं वो तो इसको मेंटेन कर लेते हैं, जिनमें कुछ कमी रहती है किसी वजह से तो उनको ये बीमारियां पकड़ लेती है।
5: अच्छा।
6: तो इससे इसके मुख्य लक्षण आपको पहले बता दूं कि मुख्यतः गला

0: मोटू का जो रोग है ये एक बैक्टीरिया जनित होता है, पास्चुरला स्पीसीज की बैक्टीरिया से होता है, और ये देखा गया है कि नए पशु में अक्सर ज्यादा होता है, और
1: नए
0: खास
1: पशु मतलब कम उम्र
0: कम
1: के।
0: से कम 1.5 2 2.5 साल 3 साल के जो पशु होते हैं इनको बहुत पकड़ता है। उसका कारण मैंने अनुभव ये किया है, क्योंकि 1.5 2 साल 2.5 साल के पशु में ये होता है कि उनको जीवन काल में 2 3 बार ही टीके लगे होते हैं, या किसी किसी को नहीं भी लगे होते हैं, और जो बड़े पशु हैं जो 7 8 साल के हो गए, जो चार से ब्यात हो गए, उनको हर साल जो टीकाकरण होता है उसके द्वारा कम से कम 5 6 बार टीका लग चुका होता है, तो कुछ इम्यूनिटी शरीर में बन जाती
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो इसलिए नए पशु और अच्छे पशु आप बढ़िया से पाल रहे हैं, अचानक उसको गलाघोटू हो गया तो बड़ी क्षति भी होती है, परेशानी होती है। इसका मुख्य लक्षण ये है कि आपका पशु जो होगा बुखार आएगा तेज, मुंह से लार देने लगेगा, चारा दाना बिल्कुल छोड़ देगा, आप छुएंगे तो लगेगा कि हाँ शरीर गर्म है, और कुछ देर बाद जो है गले से पहले सांस में दिक्कत होगी, फिर गले से आवाज आने लगेगी, पहले धीरे आएगी फिर तेज आवाज आने लगेगी। घर घर के आप घर के अंदर रहेंगे तब भी पशु आपके बाड़े में बंधा है, बाहर निकलते ही आपको सुनाई पड़ेगा कि क्या घर घर कर रहा है हमारे बाड़े में, तो
1: अच्छा।
0: आप देखेंगे तो उसका गला भी धीरे से सूजने लगता है, बाहर जितना सूजन नहीं होता उसे अंदर की तरफ ज्यादा सूजने लगता है, तो इस तरह वो जीभ निकाल देता है और परेशान हो जाता है, दम घुटने लगता है, और जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो उसकी असमय मृत्यु भी हो जाती है।
1: जी
0: तो इसके बचाव के लिए आपको यही कहूंगा, जैसे ही आपको लक्षण दिखे तो तुरंत यथासंभव पशु चिकित्सक को ढूंढें और उनको बुलाएं, उपचार कराएं।
1: अच्छा।
0: दूसरा उपाय बचाव का है, तो आप इस समय सरकार बहुत जागरूक है, अस्पतालों में टीके सब समय समय पर भेजती रहती है, और आप बरसात से पहले अस्पतालों में संपर्क करें, वैसे वो भी आते हैं, वो गलाघोटू का टीका हर पशु को अवश्य लगवा ले, ये निःशुल्क लगाया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है,
1: अच्छा।
0: तो आप इसका टीका अवश्य लगा ले।
1: तो ऐसे बचाव हो सकल।
0: हाँ इससे बचाव हो जाता है। हाँ इसमें
1: अच्छा।
0: टीके में एक वो है कि अगर 7 8 महीने का गाभिन पशु हो तो उसको बचाया जाता है, या 6 महीने से नीचे का बच्चा हो 3 4 महीने का हो तो उसको अक्सर नहीं होता, क्योंकि 6 3 4 महीने वाले को माँ के कोख से इम्यूनिटी आ जाती है, और 8 9 महीने वाले को चूंकि वैक्सीन लगता है तो इससे भी कुछ शरीर में चेंजेज आते हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: बच्चे पे कुछ संभावना बन सकती है कि ये हो जाए, तो
1: अच्छा
0: इसको बचा करके सभी सभी पशुओं को लगा देना चाहिए।
1: अच्छा तो एकरे अलावा और दूसर कौन रोग हो सकला?
0: दूसरी बीमारी जो मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है इस समय वो खुरपका मुंहपका के भी आने के चांसेस होते हैं, और खुरपका मुंहपका सरकार हर 6 महीने पे अपने पशुपालन केंद्र, जो चिकित्सा केंद्र हो पशु सेवा केंद्र, इनके माध्यम से लगवाती है, आपको बस सजग रहना है। इस बीमारी में मृत्यु दर तो कम रहती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुंह खुर और थन लगभग तीनों पक जाते हैं इसमें, तो इसमें भी तेज बुखार आएगा। हमारे देसी पशु कुछ कम प्रभावित होते हैं, वो 2 3 4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो संकर पशु है जो अधिक दूध देने वाले जिनके हमारे हैं वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें मुंह में देखेंगे आप तो छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार आने लगती है, और पशु को चबाने में या खाना खाने में दिक्कत होती है, मुंह में छाला पड़ेगा तो जब लेगा तो एक चप चप सी आवाज आएगी और
1: अच्छा।
0: गाज जैसा बनता रहेगा, और बदन में बुखार रहेगा, आप खुरों के बीच में भी देखेंगे तो वो भी लाल हो जाएंगे, उनमें भी घाव बन जाते हैं, तो खुर में भी घाव हो जाता है, मुंह में भी घाव हो जाता है, कभी कभी थन में भी थोड़े छोटे दाने छाले जैसे दिखने लगते हैं। तो ये तेज बुखार शरीर में ये दो तीनों जगह छाले और मुंह में लार से आने लगना, और लार बहुत ज्यादा आता है तो लार चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा लार भी गिरेगा तो पशु कमजोर हो जाता है। तो ये जैसे बीमारी दिखे आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, सलाह करें, और उसके अनुसार दवाइयां औषधियां जो बताएं वो जरूर करें। देसी इलाज में यही है कि गुड़हल अड़हुल की पत्ती हो या वो हो जो मुलायम चीज हो उसको थोड़ा सा जीभ में दे, मुलायम चारा खाने को दे तो मुलायम चीज खाना पसंद करेगी, कोई भी हार्ड चीज होगा तो बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। जब तक डॉक्टर नहीं मिल रहा, बुखार उखार की दवाएं लिया करके थोड़ा बुखार कम रहे और ये सब चीजें देंगे और मुलायम चारा देंगे थोड़ा बहुत खाती रहेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, एक भी बचाव का टीका से कर
0: इसका भी
1: जा सकल।
0: बचाव हर साल टीका 6 महीने में लगाया जाता है, और 6 6 महीने में लगवा लेंगे तो पूरे साल के रोग से इसमें रोग से ग्रसित नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: इसके टीके में भी वही है कि ये निःशुल्क लगाया जाता है, और 4 महीने 6 महीने से नीचे 3-4 महीने के बच्चों को नहीं लगाया जाता है, और 7-8 महीने से ज्यादा गाभिन पशुओं उनको नहीं लगाया जाता है। शेष

0: सभी को ये टीका लगाया जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये रहा आपका खुरपका मुंहपका ये रोग। तीसरा एक रोग जो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी नए पशुओं में भी दिखता है, लंगड़ी बुखार कहते हैं।
1: अच्छा, एकर का लक्षण वाला।
0: लंगड़िया बुखार में आपको पशु इसमें दो तरह के होते हैं, एक वायरल बीमारी होती है उसमें जो है अचानक जैसे बारिश से भीग गया पशु आपके घर आया, दिखने में सब कुछ ठीक ठाक है और एक पैर उठा ले रहा है, लंगड़ाने लग रहा है और उसके भी मुंह से लार, जब पशु जुगाड़े नहीं करेगा तो मुंह से लार आना स्वाभाविक हो
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: और खाना छोड़ देगा, छुएंगे तो बुखार रहेगा। तो ये जो और लेकिन इसमें और दूसरा जो लंगड़ी जिसे BQ कहते हैं वो बैक्टीरिया से होता है, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, वो बीमारी बैक्टीरिया से होता है और ये बीमारी वायरस से होती है, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो इसमें आपको सजग रहना चाहिए, जो ब्लैक क्वार्टर वाली बीमारी BQ होगी वो उसके किसी एक क्वार्टर में जैसे कंधे के पास या कूल्हे के नीचे सूजन दिखेगी आपको,
1: अच्छा अच्छा
0: और आप छुएंगे तो दर्द करेगा और करकराहट जैसी आवाज आएगी, जैसे उसमें कुछ गैस भर गया हो,
1: अच्छा
0: दबाएंगे तो चरचराहट की आवाज आएगी। तो वो तो बहुत ही खतरनाक होती है, बैक्टीरियल बीमारी है। तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें आप और उसका इंजेक्शन द्वारा जो इलाज होता है वो कराएं। दूसरा जो लंगड़ी बुखार जैसे एफिमेरल फीवर अढ़ैया बुखार कहते हैं, उसमें भी ये लक्षण दिखता है तो उसमें, लेकिन ये जो पैरों में जो क्वार्टर्स में सूजन है ये इस तरह का नहीं दिखेगा, लेकिन लंगड़ापन आपको दिखेगा और चारा दाना छोड़ देगा। तो चूंकि ये वायरल
1: तो बैठ भी जाला,
0: हाँ बैठ भी जाता है।
1: अच्छा, तो कोशिश करे चाहिए कि बैठा ना पावे कि
0: नहीं, बैठने उठने से अपना समय से बैठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: अच्छा,
0: बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि कंडीशन ज्यादा न बिगड़े, क्योंकि ये जब हो जाता है रोग ना तो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है वो उनके फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, निमोनिक फॉर्म बन जाता है, तो फिर जीभ निकाल देता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये ना आवे, बाकी पशु ठीक है अगर आप चिकित्सक के परामर्श से बुखार और इस तरह के भूख की दवाएं आप देंगे तो ये 3 दिन के अंदर जनरली ठीक हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जो ये फीमेरल ढैया बुखार कहते हैं ये ठीक हो जाता है।
1: लापरवाही कहले पर जान लेवा भी हो सका ले?
0: हाँ, जान अगर आपने नहीं ध्यान दिया, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, लंगड़ा रहा है, बिल्कुल रुक गया और धीरे धीरे फेफड़े में इन्फेक्शन चला गया तो सांस में दिक्कत हो गई, सांस में दिक्कत हो गई तो फिर सांस रुका, जब सांस ही तो प्राण है आपका, सांस नहीं जाएगा तो फिर पशु तो बैठ जाएगा, बैठ के मर भी सकता है।
1: जी जी,
0: तो ये होता है। इसके भी BQ का भी टीका लगता है, तो इसके लिए भी टीका अस्पतालों पे आता है और आप सजग रहेंगे तो आजकल अगर आप चाहें तो गला घोटू, लंगड़ी और खुरपका मुंहपका तीनों का एक कंबाइंड टीका भी बाजार में उपलब्ध आ गया है।
1: अच्छा।
0: यदि आप प्रगतिशील पशुपालक हैं और हमें आपको आपके पास समय नहीं है कि हम अस्पताल जाएं उनको बुलाएं ऐसा करें तो बहुत महंगा नहीं है, 40-50 रुपए का एक खुराक होता है ये टीका, आप पता कर लेंगे तो दुकानों में, लेकिन कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: वो साल में जैसे मार्च अप्रैल के महीने में जब न गर्मी न रहे न ज्यादा ठंडी रहे उस समय आप लगवा लें तो लगभग 10 महीने तक ये सुरक्षित रखता है आपको तीनों बीमारियों से। तो ये आप प्रगतिशील हैं और अच्छे पशुपालक हैं, आपके पास पशु महंगे महंगे हैं तो हम यही सलाह देंगे कि ये लगा सकते हैं, इससे आप निश्चिंत रहेंगे। उसके बाद आप कहीं भी कुछ करिए आपको बोरी रहेगी कि हाँ साहब कोई आएगा तो लगाएगा तो हम ये करें, लेकिन जो नहीं संभव है उसके लिए सरकार की तरफ से पूरी सुविधा है, निःशुल्क लगाया जाता है, बस आप जागरूक हो, आप उनसे आप उनका दरवाजा खटखटा है साहब हमारे यहाँ लगा दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, एक बजे का कोनो अपने पशुओं के पंजीकरण कराओ को भी आवश्यकता हो, लेकिन पंजीकरण करा दिए तो समय समय पाए करके जो हो समय
0: ऐसी व्यवस्था तो अभी नहीं बनी है, लेकिन पंजीकरण किया जाता है। जब भी आपके पशु को टीका लगाएंगे तो आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर ये सब इसलिए लिया जाता है कि पशु को टीका लगाएगा तो ये रिपोर्ट बन के जाती है, यहाँ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जाती है।
1: अच्छा।
0: फिर वहां से कभी कभी उसके आधार पर पूछते हैं वो क्रॉस ग्रीप आपके यहाँ टीका लगा कि नहीं लगा, किसी कार्यक्रम को चेकिंग करने वाला कार्यक्रम है तो वो कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसके लिए ये सब व्यवस्था है। दूसरा एक सामान्य सा रोग जो दिखता है पशुओं में, दूध देने वालों में, थनैला।
1: जी जी,
0: ये कभी भी किसी भी समय हो जाता है, तो ये आपकी मैनेजमेंट की लापरवाही है।
1: जी।
0: जब भी कभी लगे कि हमारे पशु के थन सूज गए हों तो और उसमें से दूध निकाल रहे हैं, तकलीफ होने लग रही है, तो पैर उठाएगा, दूध का रंग बदल जाएगा, छिछड़े आने लगेंगे और थोड़ा और उग्र रूप लेगा, नहीं ध्यान देंगे आप तो वो खाना भी छोड़ देगी, उसमें बुखार भी आ जाता है, सूजन और बुखार बनेगा और थन में आप देखेंगे तो एक या दो या चारों थन हो जाता है कभी कभी। तो उसका यही उपाय है कि उसमें भी आपको पशु चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए, लेकिन उससे

0: ले आप ये जरूर कर दें कि जहां तक हो सके चारों थन को गार ले, जो खराब का थन है, क्योंकि उसके अंदर ही बैक्टीरिया, उसके अंदर ही वो खराब चीजें हैं जो उसको नुकसान कर रही है। उसको यथासंभव चार बार, तीन बार, पांच बार, जितना संभव से गार के जमीन में निकाल दें।
1: अच्छा,
0: तो उससे उनको राहत मिलेगी। और दूसरी विटामिन सी की गोलियां बाजार में आती हैं, वो ले लें, नींबू का रस ले लें, कच्चा आलू भी काट के आप अगर आधा किलो खिला सकते हैं। ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं, ये सब दीजिए, दूध गारिए, थोड़ा खाने वाला सोडा भी दे सकते हैं 50 ग्राम 60 ग्राम। तो इससे वो रुकावट रहेगी, तब तक पशु चिकित्सक द्वारा आप मिल लेंगे और कौन सी दवा उसके लिए होगी वो हो सकता है कम हो तो थन में ट्यूब डलवा के ठीक कर दें, या हो सकता है इंजेक्शन लगाना हो तो इंजेक्शन लगाएंगे। इससे
1: तो
0: बहुत नुकसान,
1: ऐसे पशु के दूध का प्रयोग तो न करें चाहिए।
0: नहीं, थनैली हो गया तो आप उसका प्रयोग न, क्योंकि वो दूध का आप जो उबालेंगे फट जाएगा, वो उसके अंदर उसका पीएच बदल गया है, उसका कलर बदल गया है, उसका कई तरह की थनैली भी कई तरह के होती है, किसी में खून आता है, किसी में पस आता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये समय देखा में आवला कि पशु जब अपन चर्च के आवाला बाहर से, ये समय हरी घास तो उपलब्ध हो जाले, तो ऐसे में जौन हो घास के साथ साथ कुछ ऐसा चीज खा लेनी जैसे कि पेट उनका लगा ला फूला, कुछ गैस बना लगा ला, तो ये भी का कोनो बीमारी
0: हो? एक बीमारी है जैसे जिसे चरी है, बरसात में चरी बोए रहते हैं, बरसात अगर नहीं हुई तो वो चरी बौनी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसी चरी जिसके अंदर सिंचाई कम है या नहीं मिला है, बरसात नहीं हुआ है, छोटी छोटी है, पीली पीली पड़ने लगी, वो उसको चूंकि अब चरी नहीं हो रहा है तो आप काट के खिला देंगे तो उसके अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो
1: उससे
0: बचना चाहिए। वैसी चरी वही खिलाई जिसको भरपूर आपने पानी दिया हो, लहलहा रही हो खेत में, वो तो ठीक है, लेकिन अगर चरी सूखी है या उसको नहीं पानी मिला है तो जहरीली हो जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ये इससे बहुत तुरंत मृत्यु होने लगती है,
1: तो इसे बचे के चाहिए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर एके प्रसाद, आप हमारे पंचायती में ही ना, और बड़ी अच्छी जानकारी देना कि दुधारू पशुओं को जो प्रमुख बीमारी है कौन कौन है और कैसे इनसे बचे के चाहिए, जैसे कि अपन दूध का उत्पादन बनल रहा है, अपन जो है चार पैसा का जो अतिरिक्त आय का जो स्रोत हो, जो उद्देश्य से पशुपालन कल गल हो सफल हो। तो डॉक्टर साहब एक जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा गौरी बहन, ये देखा दुधारू पशुओं का प्रमुख बीमारियां और एकर इलाज, ये विषय पर देखा डॉक्टर ए के प्रसाद से अपने सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया जो न हुआ वो एकदम फरिया फरिया के हर बात पूछ के बते ना।
3: आ देखा साहब बहुत बढ़िया जानकारी भी देला ना पशुओं के बारे में।
2: हाँ, जितना ही पूछत रहना फरिया के उतना फरिया के डॉक्टरों साहब जवाब देते रहना। आ देखा एक बात देखा ही बताये ना कि देखा एक गरीब बरसात का मौसम चला था आ ओकरे बदे ना कि देखा पशुओं का देखभाल कर बहुत जरूरी है, कहे से कि बहुत तरह की बीमारी आवल है जितना कि डॉक्टर साहब ही बताऊना है। तो उस सब अगर हम बचाव रखे के तो देखा पशु जो न हुआ ना, पशु चौहा हुआ, देखा कहीं ना कि हमके बीमारी हो गई, लेकिन वो अंदर अंदर उनके जो ना कि रोग उनके खराब कर दी। तो किसान का जो पूंजी बा खेती किसानी पशु चौहा ही तो हुआ, तो हम सबके जो ना कि ये बात का ध्यान रखे के चाहिए जो डॉक्टर साहब बताऊना है।
3: और यो बता दल में जैसे बहुत सारी बीमारी है बरसात के समय में जानवरों के अधिक हो सकल है, तो यही समय मतलब बरसात में उनके बचा के रखे के चाहिए।
2: हाँ, बचा के रखे के चाहिए। या देखा ही काम ना कि देखा लोग सोचते हैं कि लोग बात बात कही करिए कि कुछ मन मनसान भी करिए अपन, तो ये देखा डॉक्टर संध्या गुप्ता बहन है, इनका गवनी हुआ तो सुना, किसान भाई लोग भी सुना
3: सुनवा।

0: एक डॉक्टर संध्या गुप्ता बहन का कितना नीक गाउन ही रहला।
1: हाँ, आ देखा ये कहम ना कि संध्या गुप्ता बहन जो ना कि एकदम ऐसा गौनी कि मन एकदम फरार हो गया मन का। तो ये कहम ना कि देखा गौरी कि यही लगले देखा काल जो ना अपने पंचायती में कार्यक्रम होए वाला ना ओकर भी जानकारी अपने पंच लोगन के दे देवे के चाहिए। तो काल का सुनेबू सवेरे।
0: कल सवेरे खेती की बातें कार्यक्रम में सवेरे 6:05 पर मूंगफली की फसल की देखभाल पर जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: आ देखा कल साँझे के 6:30 पर जो अपन कृषि जगत कार्यक्रम है एमे देखा बातचीत सुनवाओल जाई कि सब्जियन का सामयिक बीमारियां और इनकर नियंत्रण ये विषय पर डॉक्टर के पांडे से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया का बात कही हुआ तो वो सुनिया आ किसान भाई लोग भी सुनिया। आ देखा ये कहम न कि देखा ये समय देखा बरसात का सीजन चला था आ खेते बारी सब लोग जात हुआ बहुत लोग हुआ कि देखा देर साँझ के लौटत हुआ। आज जब लौटा ना तो देखा हाथ में लाठी डंडा जरूर ले ले रहा आ देखा टार्च भी ले ले रहा आ ठोकर ठठावत घरे आवा जो ना ताकि जो छोटा मोटा जीव जंतु हो जो पानी की वजह से जो ना कि डांडे मेढे पाके बैठल हुआ ना वो देखा अपन जगह पकड़ ली हाँ। वो चाहे ना कि हमन के आदमी से भेंट ना होखा लेकिन जो ना कि कभी कभी होला कि देखा आदमी गाँव से गई ना उनका पैर पड़ गल तो उनकर भी मजबूरी हो जाले। तो ये लिए देखा को आपकी गोजी डंडा लेके निकला लोग घर से अपने जो ना भैया लोग आ राती बिराती अगर कहीं जाए के होगा तो ठोकर ठट्ठा और चलें तो ये देखा ये काम ना कि देखा जैसे मन समय से आए ले जाए उसे मन के समय से जाए के भी चाहिए। तो पंच लोग से इजाजत ले जाए तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

के एंट्रेंस से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं और अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ को हम कर रहे हैं फिल्म एहसास के गीत से। आवाज़ किशोर कुमार की है, ये सुनें।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में ये आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम बेकरार और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज़ में फिल्म चितचोर का गीत। गीत संगीत और गीत को लिखा और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चितचोर से और आवाज़ यसुदास की थी। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सोचना है।

श्रोताओं, ये सूचना प्रभारी निरीक्षक चुनार, क्षेत्राधिकारी चुनार और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार संध्या, पिता का नाम कालीचरण, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, ये ग्रीन कलर सूट सलवार ये पहनी हुई थी जब ये लापता हुई थी, और ये दिनांक 2/6 2000

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज़ में फिल्म चित चोर का गीत। गीत संगीत और गीत को लिखा और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चित चोर से, और आवाज़ यसुदास की थी। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सोचना है।

0: श्रोताओं, ये सूचना प्रभारी निरीक्षक चुनार, क्षेत्राधिकारी चुनार और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार संध्या, पिता का नाम कालीचरण, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, ये ग्रीन कलर सूट सलवार ये पहनी हुई थी जब ये लापता हुई थी, और ये दिनांक 2/6/2000
1: हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारम्भ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से।

0: में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपरलीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
1: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो फास्टैग कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार हैं उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग थी, सरकार हमारी मांग पूरी कर देगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोड बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें, ताकि छात्रों से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो और भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं न हो।
2: लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है, और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और सदन में हम उसको स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का सबसे बड़ा हमारा भविष्य हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा हर नौजवान को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, और हमारी सरकार तैयार है कि देश के नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जिले के पहले 6-लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सुदृढ़ हुई कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत की संकल्पना को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है, और आवागमन का माध्यम जितना अधिक तेज होगा, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और समृद्धि भी आएगी।
3: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
0: अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक के बाद आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिरामदास छावनी में हुई इस बैठक में रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। इससे पहले कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जांच पर भरोसा रखा जाए, और जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR

0: लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। इस मौके पर अमरोहा के गजरौला स्थित रेडियो संग्रहालय के संस्थापक राम सिंह बौद्ध ने कहा कि मौजूदा दौर में भी आकाशवाणी ज्ञान और विज्ञान को फैलाने का सशक्त माध्यम बना हुआ है।
2: आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की और विशेषकर रेडियो सुनने वालों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की ओर सब लोग अपना विषय बताने के उसके अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात रेडियो पर शुरू कर रेडियो पुनः लोगों के हाथों में आ गया है और इसके सुनने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
0: आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में आज से गंगा नदी में इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट परियोजना के तहत ये शुरुआत की गई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इस बीच वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। शाम के 7:37 और 34 सेकेंड ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मात्मा से। और आवाज़ें इस गीत में हैं मुकेश और कंचन की हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम पहले ही हमने आपको बताया, धर्मात्मा।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसरंग, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आइए सुने हम और आप साथ साथ।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़, रचना ऐश कंवर की और फिल्म का नाम दिल ही दिल में, संगीत मंधीर का और कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसरंग।

श्रोताओं, रचना थी ऐश कंवर की और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की थी। फिल्म का नाम था दिल ही दिल में और संगीत मंदिर का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमारा और आपका दोनों का इंतज़ार कर रहा है। कार्यक्रम रसरंग फिल्म संगीत पर आधारित।

सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों

में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है
ताकि किसी

एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की

कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से

0: से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 और 14 सेकेंड फिल्म संगीत का कार्यक्रम

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये गीत जो आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था लहू के दो रंग, संगीत बप्पी लहरी का था। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कर रहा है आपका और हमारा दोनों का इंतज़ार कर।

श्रुतम फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, और आवाज़ें आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की थीं। संगीत मदन मोहन का था और कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर, 8:26 और 26 सेकेंड। अगला गीत आइए सुने हमारा आप साथ।

श्रोताओं, ये आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम फिर जन्म लेंगे हम, रचना गौहर कानपुरी की और संगीत बापी लहरी का।

0: बहुत कुछ ये कहता है।
1: श्रोतों कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम बसेरा, संगीत आर डी बर्मन का और रचना है गुलजार की।

श्रोताओं, फिल्म गीत का तचल के जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत जो आप सुन रहे थे, और इसमें गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। आप सुनेंगे समाचार संध्या।

में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की।

0: में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से

0: की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हमनसब निकोशोर डान के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वीं नौरत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर जेपी नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर जेपी नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहानात के वकार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
2: वो बहाना जुड़ रहा आज तो फिर कांग्रेस

0: दोनों सदनों में शुरू में सुप्रीम कोर्ट का अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोटासिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोरडान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वक्त की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हम मनसब जनाब डॉन के साथ वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शोबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फरोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुआहदे के इख्तिताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इक्तसादी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिले तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनअती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अल-अक़वामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में ताउन

ने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत की गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे DRDO ने उड़ीसा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हुसूलियाबी भारत के दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे का एक अहम संग मील है। जनाब सिंह ने कहा कि जमीन से फजा में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल तैयार करने की सलाहियत सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मिसाइल निजाम की मदद से भारत की दरामदी इन्हिसारी में कमी आएगी और मुल्क के फजाई दिफाई निजाम की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। गुजरात में शदीद बारिश जारी है, जिसकी वजह से खासतौर पर जनूबी गुजरात खत्ते के बहुत से हिस्से जेरे आब आ गए हैं। मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। कस्बे और गांव जेरे आब आ गए हैं, जबकि रेल और सड़क नकलो हमल मुतासर हुई है। वलसाड़, सूरत और नवसारी समेत बारिश से मुतासर अजला में बचाव और राहत की कार्रवाइयां मिशन मोड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुनूबी गुजरात में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गांधीनगर के रियासती हंगामी ऑपरेशन के मरकज में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वजीर आला ने बारिश से मुतासर अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासर और नशेबी इलाकों में राहत और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों को तेज करने को अव्वलीन तरजीह दें। पेश है एक रिपोर्ट। तूफानी बारिश ने गुजरात के बहुत से हिस्सों में मामूल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जुनूबी और वस्ती अजला इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। नौसारी के खेड़गांव में 16 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सूरत के अमरपाड़ा में आज शाम तक 15 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वलसाड़, भरूच और खेड़ा जिलों में भी शदीद बारिश की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। नौसारी में वजीर हर्ष संघवी ने आला हुकाम के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त के कंट्रोल रूम में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। औरंगा और दमन गंगा जैसे तुगयानी पजीर दरियाओं ने हुकाम को बहुत सी शाहराहें बंद करने पर मजबूर कर दिया। गोलवाड़ और उम्बेरगांव के दरमियान एक पुल पर सतह आब खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद आज मगरबी रेलवे की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके बायस बहुत सी ट्रेनों को कलील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहत और बचाव की टीमें जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं, जिसमें NDRF का अमला फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ है। अहमदाबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसके बायस मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और रियासत में शदीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने शदीद बारिश के मद्देनजर राहत और बचाव की कार्रवाइयों और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए मरकज की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शदीद बारिश की सूरत हाल में राहत और बचाव की कार्रवाइयों से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी बात की। मरकजी वजीर दाखिला ने रियासत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। सिक्किम के नामची जिले में समरडंग में NHPC तीस्ता के स्टेज 6 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग में फंसे तमाम 25 लाशों को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 4 दिन से जारी बचाव कार्रवाई अपने अख्तिताम को पहुंची। सिक्किम सरकार और कई मरकजी एजेंसियां इन बचाव कार्रवाइयों में शामिल थीं। सिक्किम सरकार ने भी इस अलमनाक हादसे की वजूहत का पता लगाने के लिए 4 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी से 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। आज जम्मू कश्मीर में फलियन मंडल प्राबंली के नजदीक दरियाए तवी में अचानक तुगयानी के सबब वहां फंसे 2 अफराद जम्मू पुलिस और आफात से निपटने के रियासती दस्ते SDRF ने तेजी से और करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई की और उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड शहर के ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब
भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी, जिनमें लवलीना भी शामिल हैं, को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बिरमिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकाम

नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदु किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामला के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोशोर डॉन के दरमियान बुखारेस्ट में वफद की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी।
1: पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोश ओर्डन के दरमियान बुखारेस्ट में वफ्द की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 और अब रात्रि के 9:31 और 5 सेकेंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अंजुमन। अंजुमन की यह है पहली भेंट।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आपके लिए उपलब्ध हैं डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी। ये आवाज़ थी मिताली सिंह की, और अब आगे बढ़ते हैं अंजुमन की अगली पेशकश।

श्रोताओं, ये आवाज़ थी तलत अज़ीज़ की और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं की आवाज़ थी जगजीत सिंह की, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़। ये आवाज़ अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की है। ये रचना आइए सुने हम और आप साथ साथ।

श्रोताओं, अंजुमन कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश थी। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ थी, और इसी रचना के साथ ही आज का अंजुमन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष लीजिए सुनिए विशेष वार्तालाप प्रसारण का बदलता क्षितिज। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के जी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवनलाल।
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों ने बहुत एक्साइट किया और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिनमें गति है, प्रगति है। दिस क्रिएटिविटी, दिस एक्साइटमेंट, दिस मूवमेंट एंड आज का फोकस भी इन द कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें से बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है। सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर। शी इज द रिसिपियंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स। अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा। डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं। डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी। With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business, that is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and also engages with actually designing the syllabus, which he's done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries. He has served as the Vice Chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं, जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं, तो अगर हम री इमेजिन कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं इंटर जेनरेशनल शिफ्ट जो इस री इमेजिनिंग में और रिक्रिएटिंग में आएगा, वो किन एरियाज में आना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि जब हम री इमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इसमें एक शब्द है री, हमें फिर से विचार करना है, फिर से इमेजिन करना है। तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे, यानी आप री इमेजिन कैसे करेंगे? आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा, उसके आधार पर आप री इमेजिन कर पाएंगे। तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे, तो हमने भाषा के स्तर पर हमने री इमेजिन करना शुरू किया। जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है।

0: हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए। जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूँ तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी, और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए, खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी, जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है। विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर मैसेज और रिसीवर की बात करते थे, वहां पर डेनिस मैकक्वेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है, वो एक्टिव है। तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है। पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूँ। इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूँ। यानी आपकी एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं। पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं, तो मैं उनको इमेजिन करते हुए, उनका चित्र देखते हुए, हम चारों का मुझे पता है, शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी।
1: थैंक यू अंजुम। कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है, और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडियम होता है, केजी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस, दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इम्पैक्ट। यू हैव सीन ट्रांजिशन, टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन, हाउ डू यू सी दिस?
2: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द विसिसिट्यूड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेलीग्राम हैज वाउंड अप, landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues, the charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also, but when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population, whether it is the agriculturist or the fisherman, it remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now in this context, I'll come to your question.
1: Right.
2: And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the, I would say, the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where, because it has been said that a photograph can speak 1,000 times better than a word, so it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio visual mediums, and the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said, you can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see, when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video. And this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
1: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP, and what would it be?
3: आकाशवाणी के 90 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। 8 जून को 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था, और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे, कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है। लेकिन

0: मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुंची है और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इंटरनेट उसी दौर में आता है और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है। उस दौर में हमारा बचपन रहा है, जब हमारे यहाँ रेडियो आता था तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। हमने वो यात्रा भी देखी है, जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं। और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है। विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो विजुअल हो सकता है। 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का, मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है। अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर, रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं। स्मृतियों से शुरू हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है, और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते हैं अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are, say, three new ideas that could actually reimagine broadcasting?
2: जो माध्यम जिसके लिए बना है वो अगर उसी में एक्सेल करे तो उसकी रीच, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी। इफ वी स्टार्ट गेटिंग विजुअल वी आर ओनली सेकंड बेस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दूरदर्शन, वी हैव सेवरल अदर प्राइवेट चैनल्स, वी ऑलरेडी आर सीइंग द प्रेशर ऑन प्राइवेट एफएम्स टू गो डिजिटल। आई डू द रेडियो फेस्टिवल, आई हैव डन 9 एडिशंस ऑलरेडी एंड व्हाट आई हैव सीन देयर एंड आई हैव टॉक्ड टू सम ऑफ द बेस्ट, लाइक यू नो द मोस्ट फेमस पीपल, एंकर्स, आरजेस, व्हाटएवर यू कॉल देम, फ्रॉम सम ऑफ द that he mentioned and others also in smaller towns, they said कि हमारी आवाज हमारी पहचान थी, हम जब किसी दुकान में घुसते थे कहीं लोग हमें सुनते थे। अभी ये जो एक होड़ मची हुई है ना, विजुअल विजुअल विजुअल, वी हैव नो रिकॉल। हम आज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद अमीन सयानी को याद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज हमारे कानों में अब भी गूंजती है। वी डू नॉट नीड टू नो हिज फेस। आई थिंक that words give you the possibility of a million fantasies. So it gives you so much of scope, so much of play, so much of fantasy, which visuals limited. Because an AI, I'm sorry to say, is limiting us further. Because what is happening is that everybody is using AI to generate messages and to create posters. That entire creativity is just getting lost. I'm not saying that don't use it. Use it as a tool, but not as a content creator. That is what I'm trying to say. Now, coming back to your question, Everybody talked about when there was this transformation. Community radios, the policy came in 2002. We got operational only in 2004, the first radio, Anna Radio. And then 2006, tak only educational institutions were allowed to broadcast to operate a community radio. In 2000

0: 2006 and the policy changed 2008, the first NGO-owned community radio came into being. What is important is what are these radios doing? This is a medium which belongs to the people. This is a true, true representative of democracy. It is by the people, for the people, and of the people. That is what a community radio is. You can only get the license if you have a community. You have to have a content community local, you have to have a governance committee that is local, and you have to broadcast 50% of the content which is produced by the community, and out of that 50%, 25% has to be about women, by women, and for them. I think which other medium is doing this? And that is why I have so much faith in community radios, and we are going slow, it's fine, but we are stable. And that is what is important. As long as hum haashe pe rehne wale logon ki awaazein la rahe hain, tab tak hum apna kaam kar rahe hain. Hum ye mic kuch aise logon ke saamne rakh rahe hain, unki awaazon ko ek manch de rahe hain, jinhone kabhi socha hi nahi tha ki unke paas bhi kuch kehne ko hai. Yahi hamare desh ki vividhta, yahi hamare desh ka rashtriya nirman ka kadam, aur yahi hame wo banata hai jo hum aaj hain. मेलबर्न की एक रिपोर्ट थी, जब कोविड हुआ रेडियो को ही लोगों ने ट्यून इन किया, एक ही विश्वसनीय सोर्स था, वो था रेडियो, एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड थिंग आई थिंक कि रेडियो के पास जितनी आर्काइव्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो इज इन इटसेल्फ
1: अ लाइब्रेरी, ट्रेजर ट्रोव, या इट्स अ ट्रेजर ट्रोव.
0: तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर I see the role of radio as a library of the past, of history, as an infrastructure. And thirdly, I see it as the voice of people. I see it as a local medium that connects with people, that talks to them in their language, and that talks to them about what concerns them. Because if we get into the AI trap, we will become subjects of algorithms. As Anjum said, we'll come back to that.
1: I think you're right. There are lots of many views on this. And before I come to you, Anjum, I'd like to also say that dissent is the essence of progress. Ye bhi samajhte hue, Anjum, ki chitij. So, thodi doomsday predictions hui, and we also know that things can go bad.
0: Medium that connects with people, that talks to them in their language, and that talks to them about what concerns them. Because if we get into the AI trap, we will become subjects of algorithms. As Anjum said, we'll come back to that.
1: I think you're right. There are lots of many views on this. And before I come to you, Anjum, I'd like to also say that dissent is the essence of progress. Ye bhi samajhte hue, Anjum, ki chitij. So, thodi doomsday predictions hui, and we also know that things can go bad, things can go good. And I think to say that radio is a safety mechanism, I think, again, public service broadcasters are already playing that role. Archives are happening. A lot of work is happening. And you're absolutely right. That's the way to go. Anjum, aapki hum nazar laate hain kshitij pe. Woh nazar hi dal sakte hain kyunki wahan pahunchta to koi nahi hai. Jitne paas jao, utna dur chala jata hai. To jab hum koi kshitij ko dekhte hain aage, aur ye achhi baat hai, isi bahane hum kshitij ki demand mein ya need mein aage badhte hain. So jab hum aage dekhte hain, aur hum audio visual isse alag jate hue, ये समझने के लिए कि आजकल अगर हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, देखिए कितना कुछ है. वो कहते हैं जब चूज करने के लिए इतना कुछ होता है तो मैं कुछ भी नहीं चूज कर पाती. तो इसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हैं? क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
2: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है. जाहिर सी बात है, विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया. साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे. तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया. साल 2007 में रिकी जार्विस बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे. किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं. बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया. कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी. कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है, यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई. क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया. तो आप ऑटोमेटिक

0: विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही है, मैं मानता हूँ। दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज़्यादा रहता है। आप अपने एल्गोरिथम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ पर क्वालिटी गिरती है, क्योंकि मुझे व्यूज़ की अब दरकार है, मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही आप व्यूज़ की तरफ जाएंगे, आप क्वालिटी से गिर जाएंगे। आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया, हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है। यहां पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो।
1: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है, या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में? एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी? डू वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर, और डू वी टेल देम what you should ask for? And I think ye duvidha rahi hai. KG, coming to you, two things. One is, of course, how we, the trust and credibility, like you spoke about, and the force multiplier, but also to understand from you that in terms of the checks and balances, especially for the public service broadcaster, ki content ki guardrails kuch jyada hi hain. Kabhi kabhi hum mante hain ki guardrails hame badhne nahi de rahi, hame expand nahi karne de rahi, hamari vision simit rakh rahi hain. पर कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्डरेल्स मुझे आगे लेके जा रही हैं। तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलेवेंट रहें?
2: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देके बाहर निकलता हूँ और वो ब्रॉडकास्ट होता है, तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना। ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है। आई गो टू सेवरल प्लेटफॉर्म्स, बट दिस इज द वन प्लेटफॉर्म वेर आई स्टिल रिसीव फीडबैक एंड पीपल टेल मी दैट सर। कई लोग ऐसे कहते हैं, हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है, और हमने चलते चलते सुना। तो ये रेडियो का चार्म है। रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूँ। दैट इज द चार्म ऑफ द रेडियो दैट स्टिल एंड्योर्स। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात कही। क्रेडिबिलिटी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जुड़ी है। ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यस, तो ऑल इंडिया रेडियो की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो इज सिनोनिमस विद ब्रॉडकास्टिंग। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट FM चैनल्स, बट रेडियो टूडे इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज द ऑल इंडिया रेडियो, द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड हाउ क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी बिकॉज हम सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम TRP के रेस में नहीं हैं, हमें जो है माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं रेडियो का बुलेटिन सुनता हूं तो मुझे पता है कि आज देश में क्या हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है। आई गेट ए बैलेंस्ड परस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज। आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज। आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे

0: कि आज देश में क्या हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है. आई गेट ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज. आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज. आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे. लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात. हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है. मन की बात की स्वीकार्यता पर पीएचडी हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका हो रहा. एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्यधारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में. उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोस पॉइंट्स. अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात कही, मैं ये कहूं कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था तो उसको तो रिटेन करना ही है. हमको इनोवेट करना है. उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करेंगे. हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा. बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. बिकॉज टेलीविजन चैनल्स का काम नहीं था वेबसाइट चलाना. क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट न्यूज क्यों चला रहे हैं? रील्स के फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं?
1: अखबार भी निकाल रहे हैं.
0: अखबार भी निकाल रहे हैं क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है. दैट डज नॉट इन एनी वे डाइल्यूट योर कोर स्ट्रेंथ. और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है. एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, आई बिलीव दैट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड ऑल दैट, इस देश के कलाओं को संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है. इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूं, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूं. उनका रिकॉग्निशन है. आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है. इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी. When it comes to development journalism, sorry to say, none of the private channels are talking about development journalism. Only Prasar Bharati is talking about, and community radios, of course, are an integral part of that.
2: Umesh, I think social interest ho, chai entertainment ho, commercial interest, sustainability of any medium, even sustainability of a channel, a lot depends on kya wo sustainable hai. To ye commerce, social, entertainment, isko balance karna future mein aap kaise dekhte hain?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही है बीजी बर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है. जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा. और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही. वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता. आपको मैं बता दूं, चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो. क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा. मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे. और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए. और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम ताल कर रहा है और तकनीक जो है ना आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती. वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है. मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है. जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे.
2: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन. और वही

0: आती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट मिल जाएगी यहाँ, और जिन आवाजों की पहचान की हम बात करते हैं उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आई थिंक वी विल क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, केजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
2: प्रसारण का बदलता क्षितिज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा, और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है वीणा वादन। कलाकार हैं डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा। राग है झिंझोटी।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप वीणा वादन सुन रहे थे। कलाकार थे डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा। राग था झिंझूटी। आपके साथ तबला संगति ईश्वर लाल मिश्रा की थी और तानपुरा पर थे ध्रुव। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के

वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर, 28,242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
2: विषय पर अपनी बात।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। किटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया।

23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।